सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य

0: विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
1: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज

0: मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विचार मंथन। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का कथन है, एक पल में मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो ले लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले वंदना अपनी मातृभूमि के लिए, स्नेहमयी भारत माता के लिए।

श्रोताओं, भक्त का मन ही उसका मंदिर होता है और भगवान की भक्ति ही उसकी सच्ची पूजा है। हर श्वास और भावना ईश्वर को समर्पित होती है।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सबसे सरल है प्रेम, प्रेम का मार्ग। जिस नाम का स्मरण प्रेम और विश्वास से किया जाए वो मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कहते हैं प्रभु का नाम केवल शब्द नहीं बल्कि वह शक्ति है जो कठिन समय में भी हमारा संबल बनती है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम जपते हैं और सुनते हैं सुरेश वाटकर के स्वर में प्रेम से जप लो।

श्रोताओं, इस वक्त आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे हैं। राम नाम के जप से मन में शांति और शक्ति और आत्मसंबल प्राप्त होता है। निरंतर राम भजन से हमारा जीवन सुखद हो जाता है। लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए ये भक्ति रचना, राम भजन कर लो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है डॉक्टर एच पी स्थापक का और वाचक स्वर है माधवी इंडे का।
1: महापुरुषों, तपस्वी, साधु संन्यासियों ने साधना के द्वारा जाना कि आत्मा में ही परमात्मा का निज घर है। आत्मदर्शन से ही परमात्मा अनुभव गम्य हो जाता है। हमारे अंतःकरण के चार भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन को बुद्धि के द्वारा अंतर्मुखी बनाया जाता है, तब चित्त में चेतना का अंकुरण होता है। इतना होने पर यदि पुनः मन अहंकार से ग्रसित हो जाता है तो मन भटकाव की स्थिति में आ जाता है। संत कबीरदास जी अनुभव की बात कहते हैं कि अहंकार पतन का कारण बनता है। कबीरा मन पंछी भयो, बहुतक चढ़ियो आकाश, वहां ही से गिर पड़ियो मन माया के पास। अहम भाव को कुचलना नितांत आवश्यक है, तभी साधक आत्मदर्शन की स्थिति में पहुंच पाता है और मन विशुद्ध रूप से आत्मा में परमात्मा का अनुभव करता है। यही सत्य है, प्रकाश है, ईश्वर है। मन की अंतर्मुखी प्रक्रिया से आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव है। इस अंतर्मुखी प्रक्रिया की साधना बड़ी चतुराई से करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से ही हृदय कमल का विकसित रूप सामने आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन रूपी भ्रमर हरि नाम गुनगुनाने लगता है और इस गुंजन प्रक्रिया के समक्ष षट विकार भटकने नहीं पाते। हरि गुण गाते हुए मन मयूर जब नृत्य करने लगता है, तब हृदय तंत्री झंकृत होने से शरीर के समस्त रोग भागने लगते हैं और कुछ दिनों में काया शुद्ध कंचन सी हो जाती है। जब बाह्य और आभ्यंतरिक शुचिता स्थान पा जाती है, तब जीव आनंदानुभूति करने लगता है। यही आनंद बड़े ही अनुभव और चतुराई के बाद प्राप्त हो पाता है। इस आनंद को पाने के लिए जीव को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सत्संग करना पड़ता है, तब कहीं कोई बिरला गुरु मिल पाता है और सही साधन

0: साधना के बलबूते सच्चिदानंद के दर्शनों का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होता है। बड़ी साधना से ही जीवन सच्चर्या में लग पाता है। एक बार माता कुंती से विदा लेते समय भगवान कृष्ण ने कुछ मांगने के लिए कहा। तब माता कुंती ने अपने संपूर्ण जीवन के अनुभव का निचोड़ प्रभु के समक्ष रखते हुए कहा कि मुझे जीवन में दुख चाहिए। दुख मांगने पर भगवान ने कारण जानना चाहा। तब माता कुंती ने कहा कि दुख में सदैव आपका स्मरण बना रहेगा और अंतिम क्षणों में आपको ही प्राप्त कर लूंगी। जीव को जब अनुभव हो जाता है कि सभी दिन एक से नहीं व्यतीत होते, जीवन सुख दुख के झूले पर झूलता हुआ अंत में अनुभव गम्य साधना के द्वारा आनंद को प्राप्त कर लेता है। भ्रम का निवारण जब हो जाता है तब व्यक्ति वास्तविकता में जीवन जीने लगता है। अंतःकरण में प्रभु का बोध हो जाना व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर HP स्थापक और वाचक स्वर माधवी एनडे का था। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 होने जा रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर हैं श्रीकांत पारगांवकर का।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कृषि सामग्री। आज आप इसमें अरहर फसल के रोग विषय पर जानकारी सुनेंगे।
1: किसान भाइयों भाइयों, अरहर की खेती में रोग हमारे लाभ को कम कर सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है और इनके प्रबंधन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो मुख्य रोग हैं वो हैं विल्ट, मोजेक, फाइटोप्थोरा ब्लाइट और अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो पहली बात करते हैं विल्ट की। इसमें धीरे धीरे काली धारियां जो होती हैं वो इसके अंदर तने में विकसित हो जाती है और तने पर गहरे बैंगनी रंग की पट्टियां आपको दिखाई देंगी जो आधार से ऊपर की ओर फैली होती हैं। ऐसे पौधों का मुख्य तना फट जाता है और जो जाइलम हम बोलते हैं तने के अंदर का, इसका गहन कालापन आप अपनी आंख से देख सकते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं और मूल भागों में गुलाबी रंग की आपको फफूंद दिखेगी। ये रोग अंकुर, फूल और वनस्पति अवस्था तीनों में देखा जाता है। इसके नियंत्रण या प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है ये 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से पहले तो बीज उपचार करके बोना चाहिए। दूसरी बात, अरहर के साथ ज्वार लगाएं, यानी कि अंतर्वर्ती खेती के रूप में ज्वार की बुआई आप कर सकते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मुरझाए हुए पौधे हैं उनको उखाड़ना ही पड़ेगा और जब भी आप अरहर की खेती करना चाहें तो उसमें इस रोग की प्रतिरोधी किस्में जो होती हैं जैसे अमर, आजाद, आशा, मारुति, C11, NP5, JKM 189, JKM 7 और BSMR 736 हैं। दूसरा रोग हमने बात की थी मोज़ेक की। ये मोज़ेक वायरस के कारण होता है, मतलब ये विषाणु के कारण होता है और ये मकड़ियों के माध्यम से खेत में फैलता है जो कि एक पौधे से दूसरे पौधों में जाती हैं। इस रोग में पत्तियां आपको छोटी दिखेंगी और शाखाओं के सिरे के पास पत्तियां गुच्छे जैसी हो जाएंगी। पौधे हल्के हरे और झाड़ी नुमा दिखाई देंगे और इनमें फूल और पत्तियां नहीं उगती। इसके बचने के उपाय के लिए 45 और 60 दिनों पर फेनाजाकिन 10 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। विकास के शुरुआती चरणों में संक्रमित पौधों को बिल्कुल हटा दें और तंबाकू, ज्वार, बाजरा, इस तरह की फसलें अंतर्वर्ती फसलों के रूप में लें। मोज़ेक रोग को बांझपन रोग भी बोलते हैं। इसके लिए आप प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा 885, आशा, शरद, नरेंद्र अरहर 1 और राजीव लोचन अरहर उगा सकते हैं। तीसरा रोग था फाइटोप्थोरा ब्लाइट, जो कि पत्तियों पर पानी जैसे गोल या अनियमित घाव आपको दिखेंगे, इसी को हम ब्लाइट बोलते हैं।

0: तने और शाखाओं पर भी ये घाव तेजी से बढ़ते हैं। ये घाव तने को घेर लेते हैं, फिर बाद में फट जाते हैं और सूख जाते हैं। बीज को मेटालेक्सिल 35WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बोना चाहिए। खेत में अच्छी जल निकासी रखें, क्योंकि ये रोग जल की भराव अवस्था में ज्यादा फैलता है। और पौधों को तने की चोट से हमेशा बचाएं। इस रोग के लिए भी कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे कि ICPL 7916, ICPL 12055 और JKM 189। इसके बाद अब बात करते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट की। इसमें जो आपकी अरहर के पौधे होते हैं, वे सभी ऊपरी भाग जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिसमें गोलाकार परिगलित धब्बे दिखाई देंगे आपको, और ये धब्बे तेजी से बढ़ते जाते हैं और फिर छल्ले के रूप में उभरते हैं। धब्बे शुरू में हल्के भूरे रंग के होते हैं और बाद में ये गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। गंभीर संक्रमण में संक्रमित पत्तियां, शाखाओं और फूलों की कलियों का झड़ना और सूखना पाया जाता है। जैसे कि हमने दवा आपको बताई थी मेटालेक्सिल और फेनाजाकिन, इन दवाओं को उपयोग इसमें छिड़काव के लिए करना होगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें, क्योंकि यदि जल भराव रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी। साथ ही मेढ़ों पर अरहर की खेती करें, जो कि हम मेढ़ पद्धति बताते हैं अरहर की, उससे ये रोग नहीं पनपते हैं। भारी मिट्टी में बुआई से बचें, क्योंकि भारी मिट्टी में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग देखने में आता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं DA2, MA 128 और MA 128-2।
1: कृषि सामिकी में अभी आपने सुना अरहर फसल के रोगों की जानकारी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 10:10 का समय है विश्व दर्पण का। रात 8 सुनिए संसद समीक्षा। न्यूज़ एट 9 रात 9 और 9:15 पर सुनिए स्पॉटलाइट।

संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

सुबह 10 बजे का समय है जिले की चिट्ठी का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होती है 10:58 पर न्यूज हेडलाइंस से।

दिन में 1 बजे महिला सभा, 1:33 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत रिले किया जाएगा।

शाम 5:02 का समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवावाणी का। हमारे ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे।

और अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर, 10:20 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, शाम 6:30 पर लोक संगीत। कलाकार हैं देवी सिंह दहिया। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,2000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,2000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,2000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम

0: रेलविभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृतास्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100 मीटर भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम

बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के बड़े तालाब में निकाली जाएगी नौका तिरंगा यात्रा। अहमदाबाद निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को व्यापक परामर्श संसद दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इस समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के 21 सांसद, सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। भोपाल के बड़े तालाब में आज नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से बोट क्लब से यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का मंत्री विश्वास सारंग ने कल जायजा लिया और सुरक्षा, यातायात, नाव संचालन और गोताखोरों तथा SDRF की तैनाती के निर्देश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: मध्य प्रदेश और गुजरात ये परस्पर एक दूसरे के साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर अपनी साथ में प्रगति के लिए चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मां नर्मदा के कारण से गुजरात की भी समृद्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन समय जब CM थे उसी का लाभ गुजरात को भी मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला। अपने राज्य के

0: गुजरात के व्यापारियों को जो गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करे, साथ ही समान रूप से मध्यप्रदेश में भी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए।
1: उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। संवाद में 500 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रपति के विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेंगे। इनमें पुलिस के 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदक, जबकि होमगार्ड के 3 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। इसके अलावा 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मरणोपरांत मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को भी सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता बाधक नहीं बने। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या उनका डिमोशन ना किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। वह एनीमिया नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए तैयार उत्कृष्ट IEC सामग्री को बेस्ट IEC डिस्प्ले सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदान किए गए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,33,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समारोह को संबोधित कर रही थीं। इनमें सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं। श्रीमती गौर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। इसके गठन से सिंहस्थ से जुड़े विकास, अधोसंरचना और प्रशासनिक कार्यों को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है। भोपाल में आज से हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे महापौर मालती राय करेंगे। इसमें देशभक्ति, विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। भोपाल में भारी बारिश के बीच जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया है कि बारिश से पहले ही नगर निगम, SDRF, ट्रैफिक, राजस्व और सड़क से जुड़े विभागों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। उन्होंने कहा है कि जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टीमें लगातार काम कर रही हैं।
3: बहुत सी जगह हैं जिनकी मुझे भी सूचना मिली है, मुझे भी जो फीडबैक मिला है, जहां पूर्व वर्षों में पानी ज्यादा भरता था, बट इस बार जो है वहां साफ सफाई से वहां उतना तेज पानी नहीं भरा और निकला भी, समय पर निकल भी गया। शायद ही कोई शहर हो ऐसा देश का, आप चेन्नई ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हर जगह ये अर्बन फ्लड्स जो है वो एक सच्चाई है शहरों की। हम ये सोच लें कि पानी कहीं पर एक बूंद भी नहीं रुकेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन वो किस गति से निकल रहा है और जो भी स्थानीय प्रशासन है वो किस गति से काम कर रहा है, यही हमारा रोल है।

वहीं कम दबाव के कारण प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते विभाग ने आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में खरगोन, खंडवा, गुना में तेज बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के शासकीय महाविद्यालय दलौदा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में नशा मुक्ति युवा भारत थीम पर जिला स्तरीय विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नीति धारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में एड्स के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कल जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग जबलपुर।

गुड मॉर्निंग जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। समय की इस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें। जिंदगी ने जब इतना दिया है बेशुमार, तो जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें। क्योंकि ये बात इसलिए सच है कि कुछ लोग अपने जीवन में होने वाली कमियों को ही गिनाते रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। सबसे पहले तो ये काम करें कि हम उनसे दूर रहें, और हम अपने लिए ये करें कि अपनी हर सुबह का, हर दिन का एक नए ढंग से स्वागत करें। तो चलिए आज की इस सुबह का भी हम स्वागत करें

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग जबलपुर में आज हम बात करेंगे संक्रामक रोगों की, क्योंकि जितने खतरनाक ये रोग होते चले जाते हैं उतना ही बचाव उससे हमें पहले ही कर लेना चाहिए। और बदलते मौसम में खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना है और किन किन बिंदुओं पर हमें काम करना है ये हम ज़रूर सोचें और ध्यान रखें। सबसे पहले तो हाथों की सफाई, भोजन करने के पहले, शौचालय के बाद साबुन का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करें, हमेशा स्वच्छ यानी साफ पानी का सेवन करें, भोजन जो हम कर रहे हैं जिस भी तरह का खा रहे हैं खास तौर से देखें कि वो किस ढंग से बना हुआ है, यानी उसकी सफाई का भी ध्यान रखें। खांसते छींकते समय मुंह पर हम नाक पर रुमाल ज़रूर रखें ताकि जो भी हमारे आसपास है उनको उससे नुकसान ना पहुंचे। व्यक्तिगत वस्तुएं तो आजकल सभी को पता है, जैसे हमारा टॉवल, रुमाल, टूथब्रश, ये सब कोई भी साझा ना करें, किसी को भी ना दें और ना ही हम किसी और का इस्तेमाल करें। आसपास की सफाई, खास तौर से घर के आसपास अगर नालियां हैं तो वहाँ पर कचरा इकट्ठा ना हो, गंदा पानी इकट्ठा ना हो, इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ज़रूर हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे आसपास का वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है, जितना ही हम स्वस्थ रहते हैं हमें बाहर की चीज़ें सुंदर दिखती हैं, और सुंदरता के लिए हमें अपने आसपास की सफाई भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, एक तस्वीर खींची थी मैंने, अब वो तस्वीर मुझे खींचती है।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी मैं पी के संग। जिंदगी की डोर भले ही ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन रिश्तों की डोर हम नीचे वाले ही संभालते हैं। ये डोर कहीं छूट ना जाए, कोई दूर हमसे रूठ ना जाए, इस बात का ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी। और ये सहनशीलता ज़रूरी है हर मायने में प्रेम के हिसाब से। जब प्रेम होता है रिश्तों में, तो अपने आप त्याग, सहनशीलता, अपनापन बढ़ ही जाता है।

सच ही क्या कहा गया है कि हमारी ज़िंदगी को दिशा देती है हमारी अभिव्यक्ति, हमारे बोलने का कौशल। स्कूल, कॉलेज और नौकरी में साक्षात्कार के दौरान यही काम आता है, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति ही वही कमाल कर जाती है। हमारे टीचर, प्राध्यापक, गुरु, साधु संत या बड़े बड़े नामचीन नेता अपनी वाक्पटुता यानी अभिव्यक्ति के आधार पर ही सभी के प्रिय बनते हैं। तो इस बात में पूरी सच्चाई है कि हम जो भी बोलें वो तोल मोल कर बोलें, क्योंकि हमारे बोल ही याद किए जाते हैं, हमारे जाने के बाद भी और हमारे जाते समय भी।

कहते हैं हमेशा सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हमारे आसपास हमारे वातावरण में भी जो एनर्जी है वो हमसे जल्दी मैच खाती है, जल्दी मिल जाती है, जो हम मांगते हैं वही पूरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे लोगों की संगत में रहें, ताकि हमारे विचार भी अच्छे रहें।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस

0: को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
6: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
2: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
4: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं, मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग। अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती। भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में

0: मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और दमोह से खुशी हुर्रा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

कभी कभी शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, वो समय की स्मृति बन जाते हैं, वो पीढ़ियों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, संस्कृति की चेतना को अक्षुण्ण रखते हैं और मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को जगाते हैं। एक ऐसे ही महान शब्द साधक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। उन्होंने कलम को यश पाने का साधन नहीं, समाज का ऋण चुकाने का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में गांव की पगडंडियां बोलती हैं, किसानों की पीड़ा स्वर पाती है, मानवीय रिश्तों की ऊष्मा स्पंदित होती है और भारतीय जीवन दर्शन अपनी सरलता और संपूर्ण गरिमा के साथ आकार लेता है। उन्होंने भाषा को अलंकारों से नहीं, आत्मीयता से सजाया, शब्दों को वैभव से नहीं, संवेदना का सौंदर्य दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक, गद्यकार, संपादक और भाषा संस्कारक के रूप में अमर है। वो एक उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक होने के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी थे। उन्हें हिंदी गद्य का अनुपम शिल्पकार और भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1960 में उन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहबाद जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बचपन में पिता से सुनी रामकथा और ग्रामीण जीवन ने उनके भीतर लोक संस्कृति और बोली भाषा के संस्कार बो दिए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जहां उन्होंने कैथी लिपि, हिंदी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और बनारस की अदालत में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही आरा में हिंदी शिक्षक के रूप में

उन्होंने कार्य आरंभ किया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती। यूं भारत भूमि की आजादी का स्वप्न उनके भीतर जागने लगा।

इसी बीच साल आया सन 1921। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी की पुकार पर आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। इस तरह अब उनका जीवन पत्रकारिता और साहित्य को पूर्णतः समर्पित हो गया। वो केवल संपादक नहीं बल्कि संपादन संस्था के रूप में स्थापित हुए। सन 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित मारवाड़ी सुधार नामक पत्रिका से उनकी संपादकीय यात्रा आरंभ हुई। सन 1923 में वो ऐतिहासिक मतवाला मंडल के सदस्य बने। कलकत्ता से निकलने वाले राष्ट्रीय पत्र मतवाला के संपादकीय मंडल में वो निराला जी के साथ शामिल थे। मतवाला के नामकरण और इसके जुझारू तेवर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को तीखा स्वर दिया। लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादन विभाग से भी वो जुड़े और यहीं मुंशी प्रेमचंद के निकट सहयोगी बने। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की भाषा को तराशने और उसके संपादन का श्रेय शिव पूजन सहाय जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें उर्दू प्रभावित वाक्य विन्यास का परिष्कार किया तथा देवनागरी मानकीकरण के साथ कथा गद्य को प्रवाह देने में योगदान दिया। सन 1926 से 1936 के बीच अपने काशी प्रवास के दौरान वो जयशंकर प्रसाद के मित्र मंडल में शामिल हुए और जागरण पत्रिका का संपादन किया। प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी की पांडुलिपि के संशोधन का ऐतिहासिक गौरव भी शिवपूजन सहाय जी को प्राप्त है। उन्होंने इसमें क्लिष्ट तत्सम भाषा की व्याकरणगत संगति, छंद सुधार और मुद्रण योग्य पांडुलिपि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निराला जी की अनेक बिखरी हुई पांडुलिपियों के संपादन और मतवाला के लिए अनेक अनगढ़ गद्य को निखारने का कार्य किया। इस तरह उन्होंने हिंदी के तीन युग पुरुषों की कृतियों को संवारा लेकिन स्वयं सदैव नेपथ्य में रहे। लेकिन सच यही है कि यदि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इतना प्रांजल हुआ, यदि निराला जी का काव्य शिल्प मतवाला के माध्यम से स्थापित हुआ और यदि कामायनी जैसी अमर कृति इस रूप में सामने आई, तो इसमें शिव पूजन सहाय जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमण ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिव जी ने लिखा कम लेकिन कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में शिवपूजन सहाय एक माली थे, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे। उनकी बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण है। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय नेपथ्य के महानायक के रूप में स्थापित होते हैं।

सन 1934 से 1939 तक दरभंगा के लहरिया सराय स्थित पुस्तक भंडार से जुड़कर शिव पूजन सहाय ने संपादन का कार्य किया तथा बाल पत्रिका बालक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1939 से 1949 तक वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। यहाँ वो 10 साल तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। उनके लिखे आरंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन जी का मानना था कि साहित्य केवल बुद्धि का विलास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार तथा समाज का दर्पण है। उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। वो ठेठ देहाती मुहावरों, कहावतों और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इतनी चतुराई से करते थे कि भाषा में अलौकिक तरलता आ जाती थी। उनकी लेखन शैली में दृश्य रचने की अद्भुत क्षमता है। वो शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक स्वयं को उस परिवेश का हिस्सा महसूस करने लगता है। आचार्य शिव पूजन सहाय के लेखन की एक विशेषता ये भी है कि वो गंभीर से गंभीर विषयों में भी सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य का पुट मिलाकर भाषा को बोझिल होने से बचा लेते हैं।

भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क थे। उनका गद्य न तो संस्कृत की जटिलता से दबा हुआ था और न ही उर्दू फारसी का अतिशय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। ये हिंदी का अत्यंत परिमार्जित और प्रांजल रूप था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, विभूति, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृतिशेष, हिंदी भाषा और साहित्य आदि। सन 1926 में प्रकाशित उनकी कृति देहाती दुनिया को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसमें गांव केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं जीवंत पात्र सा सामने आता है। खेत, मेले, लोकगीत, रिश्तों की ऊष्मा और बाल मन की सहजता, सब कुछ इतनी आत्मीयता से चित्रित है कि पाठक स्वयं उस गांव का निवासी बन जाता है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, रहस्य ये है कि जब हम लोग रामायण पाठ की कथा सुनते सुनते ऊंघने लगते तब बाबूजी मुस्कुराकर पोथी बंद कर देते और हमें दुलार कर सुला देते। माता के आंचल में छिपकर सोने में जो सुख और सुरक्षा मिलती थी वो संसार की किसी राज सिंहासन पर नहीं थी। ये केवल एक स्मृति नहीं भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक भावचित्र है। सहाय जी ने संस्मरणों की विधा में भी अमूल्य योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह वे दिन वे लोग केवल स्मृतियों का संकलन नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण अत्यंत आत्मीयता से किया है। निराला जी के विषय में वो लिखते हैं, निराला जी के पास जब जेब में पैसे होते थे तो वे किसी भूखे नंगे को अपनी कुर्ती तक उतार कर दे देते थे और जब शाम को उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस भी नहीं बचती थी तब वे अपनी कालजयी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाते हुए अंधेरे कमरे में बैठकर हंसते थे। ऐसे थे हमारे निराला। इस छोटे से संस्मरण में केवल निराला जी का व्यक्तित्व ही नहीं शिवपूजन जी की संवेदनशील दृष्टि भी झलकती है। देश की आजादी के बाद सन 1950 से 1959 तक वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक पत्र के संपादक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 21 जनवरी सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान साहित्य सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी ना।
0: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती।

अभी आप सुन रहे थे लोक रसधार, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। अब से कुछ ही पलों बाद

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
4: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वाज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कंप्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज़ अ मैसिव थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो

0: अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, वो काफ़ी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
3: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई color ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज़ ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील कि था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
0: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज़ जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में, एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं, बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने, जागने, सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी

0: तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं, बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में, समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी, और हम
1: दिन
0: आपको
1: बन गया,
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें जो तबीयत ख़राब होती है, और इट इज़ योर मंथली साइकिल। दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज़ ट्रेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज़ टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक मतलब एवरी डे देर वॉज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब दो दो ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज इन समथिंग, वी ऑल नो एवरी थिंग, तो हमको सब चीज़ में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए।
1: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए।
3: यस।
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था, तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
0: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया, वो अनप्लान था, बट वहाँ पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में, फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर

0: मुंबई पे ही आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखदुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है। हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना, जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, सेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे, और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तो मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुँचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस
0: ड्यूरेशन में। एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब 0 हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया,

0: और हमने 60 knots ऑफ विंड, मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली
1: वाली
0: थी।
1: थी तो
0: और
1: मतलब
0: एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहाँ पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊँ, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
2: आप बताएं एज स्क्वाड्रन लीडर वैशाली की द नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमेन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
3: मैं फ्रैंकली ये बताना चाहूँगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज़ हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूँगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ़ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज़ जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
2: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
0: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने मैं काफ़ी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
2: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ ख़राब हो गया उसका रिपोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है। तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी। तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
2: तो आपने वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
3: नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
2: तो strong lady, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने experience को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
0: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज़ में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था उन्होंने हम

0: हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है और फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
2: उसके कभी नहीं।
1: निसंदेह साहस का, अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर। आप बताएं मेजर प्राजक्ता, किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे अब, एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुँचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो इस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज़्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफ़ी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था। और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर ख़राब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन, एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज़ आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले, दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: सच अ
2: ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: I would like to say कि success comes with hard work, perseverance and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था, एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो लेटर लेके गई थी, एंड दैट इज़ वॉट kept me going through this entire
1: yes मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपेडिशन आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी उनको भी जो आगे

0: अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: ये क्या सिमरन, तुम फिर उदास हो गई?
1: बड़ी ठोकर खाई है।
0: अब तुम्हें कोई ठोकर नहीं मार सकता। अरे मैं हूं ना।
1: ठोकरें खाना मेरी जिंदगी बन गई है और इन ठोकरों से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मेरा यकीन है कि ठोकरें आदमी को इंसान बनाती हैं।
0: वाकई सिमरन, तुमने बड़े दर्द झेले हैं।
1: आदिल, दर्द सहने का अपना अलग एक मजा होता है। दर्द इंसान में ताकत पैदा करता है।
0: क्या तुम उससे शादी करोगी?
1: वो मेरी शादी हरगिज नहीं होने देंगी। भला एक मेहनती और मुफ्त में मिली नौकरानी को कौन छोड़ सकता है?
0: अरे सिमरन, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले भी कभी राजी नहीं होंगे।
1: फिर छोड़ो ये शादी वादी की बात।
0: नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सिमरन।
1: देखो आदिल, प्यार को गलत नाम न दो। तुम मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करते हो।
0: ये क्या कह रही हो सिमरन? कसम से मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी आत्मा की गहराइयों से।
1: मुझे और कमजोर मत करो आदिल, मैं टूट जाऊंगी।
0: नहीं सिमरन, नहीं। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, अपना घर दूंगा, तुम्हारी आत्मा से प्यार करूंगा सिमरन।
1: कहीं ऐसा ना हो ये सपना आंखों की पलकों तक ही सिमट कर रह जाए।
0: जागती आंखों के सपने कभी झूठे नहीं होते। इन आंखों में देखो, पास से और नजदीक आकर देखो।
1: बस आदिल, मैं हार गई, तुम जीत गए।

0: तो यूं आप दोनों एक दूसरे के हो गए।
1: हाँ, आदिल यही कहता रहा कि माँ बाप के घर चलो, वहाँ कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर घर ले जाने के बाद वो इतना निकम्मा और बुजदिल हो जाएगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी।
0: जहाँ जाए भूखा, वहीं पड़े सूखा।
1: मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सच है, सब मर्द एक जैसे होते हैं। एक दिन आदिल ने कहा,
2: सिमरन कल हम दोनों कोर्ट में चलकर शादी कर लेंगे।
1: कोर्ट क्यों, घर पर क्यों नहीं?
2: अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी माँ और बहन बहुत दखियानूसी हैं, उनको मनाने में बहुत वक्त लगेगा।
1: हाँ, मानेगी तो मेरी सौतेली माँ भी नहीं।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ कोर्ट ही ठीक रहेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा।
1: मुझे डर लग रहा है आदिल।
2: मैं हूं ना।
1: और इस तरह हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी होते ही कुछ दिन तो आदिल ने मुझे होटल में रखा। जब पैसे खत्म हो गए तो उसकी जिद बढ़ती गई कि मैं उसके माँ बाप के घर चलूं। जब मैं उसके घर जाने पर राजी हो गई तो वो बोला, देखो सिमरन, मेरे घर वाले जरा मिजाज के खराब हैं, वो कुछ भी कहें तुम बर्दाश्त करोगी, रिएक्ट नहीं करोगी।
2: माँ, ये है सिमरन, वो आपकी बहू।
3: बहू? अरे कम्बख्त, ये किसको उठा लाया, न जात का पता न बाप का।
2: नहीं माँ, बहुत अच्छी है, आपकी खूब सेवा करेगी।
3: ले जा इसको यहाँ से, मैं ऐसी ऐरी गैरी को अपनी बहू नहीं बना सकती।
4: माँ ये कौन है? क्यों भैया, कौन है ये?
3: क्या मालूम कौन है, उठा लाया किसी को सड़क से और कहता है आपकी बहू है।
4: तौबा तौबा भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए?
2: अरे तुम चुप रहो ना, अपना काम देखो।
3: मैं कहती हूँ फेंका इसको गटर में जहाँ से

0: लाया है।
1: नहीं नहीं माँ, अब ये यहीं रहेगी।
2: माँ जी, अपने पैर की धूल समझकर कदमों में जगह दे दें, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी।
1: माँ, मेरी अच्छी माँ, प्लीज मान जाओ ना।
3: भैया, मगर ये हमारे साथ नहीं रहेगी। अरे जो गोदाम के पास वाली कोठरी है ना, उसी में रखना इसे।
1: अरे ये तू क्या कह रही है?
0: हाँ वो ठीक कह रही है, ये खोली में ही रहेगी, समझा?
2: माँ मैं कहीं भी रह लूंगी, बस अपने कदमों में जगह दे दें।
3: ओहो, एक तो मेरे भोले भाले भैया को फांस लिया, और देखो तो कैसी मीठी मीठी बातें बना रही है। चल हट यहाँ से।
4: बेचारी कमजोर औरत।
2: हाँ मैं एक कमजोर औरत हूँ, हजारों औरतों की तरह मैं कभी टूटती हूँ कभी बिखरती हूँ।
4: और तुम्हारा वो आदमी?
2: वो कमजोर आदमी वो आदमी होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। वो चाहता था कि मैं अपनी और उसकी दोनों की लड़ाई लड़ूं।
4: मगर उसने तो तुमसे मोहब्बत की थी ना?
2: मोहब्बत? उसकी हालत उस लुटेरे की तरह थी जो चोरों के गार में घुस गया हो मगर वापसी का रास्ता भूल गया हो।
4: मैं समझा नहीं।
2: मैंने उसे पा लिया था, मगर उसको पाने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने घर वालों से बहुत डरता था। उसके घर वाले मुझ पर नित नए जुल्म करते और वो देखता रहता।
4: तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की?
2: कोशिश की थी। वहां अगर कोई मेरा हमदर्द था तो वो थे आरिफ काका।
4: आरिफ काका?
2: हाँ, उस घर में चौकीदार थे। उस दिन उन्होंने ना बचाया होता तो पता नहीं क्या होता।
4: लेकिन हुआ क्या था?
2: आदिल की बहन की पायल नहीं मिल रही थी, लेकिन जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
0: अच्छा, तो आप इस घर में ये भी होने लगा?
2: क्यों माँ, क्या हुआ?
3: ओहो, बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है इसे।
2: साफ साफ बात क्यों नहीं कहती?
0: देख लड़की, सीधे से पायल वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
2: देखिए ना, ये माँ क्या कह रही हैं?
1: अरे वो कल बहन की पायल बाथरूम के बाहर रखी थी, वो वहाँ रखकर भूल गई, तभी से पायल गायब है।
2: मैं कसम खाती हूँ, मैंने तो पायल देखी तक नहीं। एक सड़ी सी कोठरी में पड़े रहना, दिन रात काम करना, आपकी बहन और माँ के ताने सहना, यही मेरी कुल जिंदगी है। मगर मैंने उफ तक नहीं की। मैंने सोचा था मेरी सेवा भाव को देखकर कभी तो माँ और बहन का दिल पिघलेगा, सब ठीक हो जाएगा।
3: अरे पर तेरे अलावा इस घर में है कौन? मैं तो कहती हूँ माँ, इसी ने चोरी की है बस।
0: ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पुलिस के हवाले कर दो।
2: माँ ये क्या कह रही हैं आप? सुनिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ।
1: सिमरन इधर आओ। माँ आप जाइए ना, मैं सिमरन से बात कर लूंगा।

0: आखिर कैसा घर है ये, कैसे लोग हैं, कैसी गृहस्थी है ये। मैं सिमरन हूं, सिमरन, मिस्टर आदिल की धर्मपत्नी, शीशे में जड़ी हुई एक मासूम सी गुड़िया, कैद भुगतने वाली एक औरत जिसको शादी की बेड़ियों में जकड़कर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया है। शायद यही मिसेज आदिल के मानी है। ये कीमती बंगला, कीमती सामान, ये ऊंची पहुंच के लोग क्या शादी से पहले वाली सिमरन को लौटा सकते हैं?
1: देखो सिमरन, तुम वो पायल मुझे दे दो, मैं मां से कह दूंगा कि वो पायल मुझे पड़ी मिली थी।
0: आदिल, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? शादी से पहले तो तुमने क्या क्या वादे किए थे, अब तुम भी।
1: सिमरन, बात को मत टालो, मैं नहीं चाहता कि थाने और पुलिस तक नौबत जाए।
0: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
1: सिमरन, शराफा से बोलो।
2: अरे ये बड़ी हर्राफा है, पुलिस से ही बाज आएगी।
0: मैं कह चुकी हूँ, मैंने पायल नहीं ली।
3: मालिक, मैंने आपकी बहन को पायल अलमारी में छुपाते देखा है।
1: क्या कह रहा है? अगर ये झूठ निकला ना, तो कोड़ों से सारे

0: बदन को लाल कर दूंगा तेरे।
1: ये सरकार देखिए, ये रही अलमारी।
0: क्या पायल तो ये रखी है?
2: ये क्या हो रहा है मेरी अलमारी के पास?
3: बुजदिल आदमी, अब तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
0: जबान को लगाम दो सिमरन, नहीं तो।
3: नहीं तो क्या कर लेगा? अरे इतना मर्द, तू कर ही क्या सकता है?
0: बदतमीज औरत, मैं तुझे छोड़ दूंगा।
3: तू मुझे क्या छोड़ेगा बुजदिल, मैं ही तुझे छोड़ती हूँ।
0: जा, मैंने तुझे तलाक दिया।
3: मुझे खुद नहीं रहना तेरे जैसे बुजदिल आदमी के साथ।
0: जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा।

0: जानते हो अजनबी, कोई भी इस अंजाम को पाना नहीं चाहता, लेकिन चाहने ना चाहने से क्या होता है।
1: तुम्हारे माँ बाप का घर,
0: किस मुंह से जाती घर, घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी।
1: कोई और सहारा?
0: जहां भी गई, मर्दों की भूखी निगाहें मेरे जिस्म में औरत को तलाश करती रहीं। किसी ने माँ बहन के पाक रिश्ते से नहीं देखा, हर आदमी ने डाली गंदी नजर डाली। इन भूखी निगाहों से छुपती छुपाती यहां पहुंच गई आत्महत्या करने।
1: तो अब क्या इरादा है?
0: वो बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ इस वीराने में क्या करने आए थे।
1: मैं? वही जो तुम करने जा रही थी।
0: मतलब?
1: आत्महत्या, आत्महत्या।
0: मगर अजनबी, तुम तो एक खूबसूरत हट्टे कट्टे आदमी, बल्कि यूं कहो कि मर्द हो, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो?
1: तुम्हारा कभी शराब से पाला नहीं पड़ा होगा ना?
0: मैं समझी नहीं।
1: शराब की सुराही, उसमें भरी रंगीन शराब, खूबसूरत जाम।
0: वही घिसा पिटा किस्सा, शराब ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम लुट गए, वगैरह वगैरह।
1: तुम मजाक समझ रही हो सिमरन?
0: जब शराब की इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिर पीते क्यों नहीं? यहाँ आत्महत्या करने क्यों चले आए?
1: नहीं, शराब पीना पाप है।
0: ये तुम कह रहे हो?
1: हाँ हाँ सिमरन, ये ना शराब ही थी जिसने मेरी जिंदगी चिंदी चिंदी करके आसमान और जमीन के बीच में उछाल दी।
0: मत रो अजनबी, मत रो।
1: मेरा घर बार था, दौलत थी, मगर इस शराब ने सब उजाड़ दिया। मैं कंगाल हो गया।
0: ओहो।
1: मैं बिल्कुल लुट पिट चुका था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। शराब नहीं मिलने पर ऐसा लगता मानो खून रगों में जम जाएगा।
0: वाकई बरसों की शराब की लत आसानी से नहीं छूटती।
1: बगैर शराब के एक दिन मैं बेहोश हो गया। वो तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा दिया, और धीरे धीरे शराब की लत छूट गई और मेरी जान बच गई।
0: मगर फिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो अजनबी?
1: शराब मुक्ति केंद्र से निकलने के बाद ना तो मेरे पास घर था, ना भूख मिटाने के लिए पैसा। कहां जाऊं, कहां ना जाऊं?
0: इसलिए आत्महत्या करने चले आए?
1: नहीं सिमरन, मेरी एक बहन थी, मैं उसके पास चला गया। वो झांसी में रहती थी।
0: फिर?
1: कहने लगी, कब से तुम्हें देखने को आंखें तरस रही थी, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कहा, कुछ मत पूछ बहना, कुछ मत पूछ। और फिर मैंने बहन को सब कुछ बता दिया।
0: बहुत परेशान हुई होंगी वो?
1: हाँ, रोने लगी, कहने लगी, भैया अब तुम आ गए हो ना तो आराम से रहो। लेकिन मुझे बहन के घर रहना, खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उसको ले लो भैया और नए सिरे से जीवन शुरू करो।
0: और तुमने ले लिए?
1: मुझे बहुत शर्म आई, उसको कभी कुछ दिया नहीं था, लेता कैसे? लेकिन वो जिद पर अड़ी रही और मैं पैसा लेकर चल दिया। रास्ते में घोड़ों पर नंबर लग रहे थे, मेरे फितूरी दिमाग ने सोचा कि मैं भी घोड़ों पर दाम लगाऊं।
0: और तुमने घोड़े पर अपनी बहन का सारा पैसा लगा दिया?
1: हाँ हाँ सिमरन, हाँ, मैं लुट गया।
0: और मारे शर्म के यहाँ आत्महत्या करने चले आए।

0: वाह मेरे बहादुर वाह।
1: अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो।
0: तो क्या शाबाशी दूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया?
1: दिलासा तो दे सकती हो।
0: उससे क्या फर्क पड़ेगा?
1: जाने क्यों आज गुजरा वक्त मुझे बहुत याद आ रहा है, खासकर अपना बचपन, जैसे कोई छोटा सा लड़का मुझसे जीने की इल्तिजा कर रहा हो।
0: तुम क्या वाकई जीना चाहते हो?
1: हाँ, तालाब के उस पार की जगमगाती रोशनी जैसे मुझसे कह रही हो कि अंधियारे से हार मत मानो, कुछ ही घंटों बाद उम्मीद का सूरज फिर उगेगा।
0: तो क्या सोचा है तुमने?
1: कुछ नहीं, पर अब तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे अपना गम छोटा नजर आने लगा है।
0: या खुदा, शुक्र है तेरी दुनिया में कुछ लोग हैं जो दूसरे का दर्द समझते हैं।
1: सुनो, पता नहीं तुम्हें ये सुनकर कैसा लगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ये उदास चेहरा मुस्कुराते हुए कैसा लगता होगा।
0: मुझे तो ये याद भी नहीं है कि पिछली बार मैं कब मुस्कुराई थी।
1: सच कहूँ तो तुमसे मिलने के बाद शायद मैं जी सकूँ, बशर्ते मुझे मेरा मकसद मिल जाए।
0: कैसा मकसद?
1: तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लौटाने का।
0: मैं चलती हूँ।
1: देखो, हम दोनों कभी भी खुदकुशी कर सकते हैं, क्या सिर्फ एक बार दोबारा जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर सकते?
0: जज्बाती तौर पर बहुत बार छली जा चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ।
1: अच्छा, एक बात सच सच बताओ, इस मोड़ पर अब क्या खोने के लिए कुछ बाकी है तुम्हारे पास?
0: शायद नहीं।
1: जब मैं जिंदगी की देहरी लांग कर मौत के आगोश में कूदने के लिए खड़ा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौटाने का मकसद।
0: सच, तुम जैसे मर्द बहुत कम देखे हैं मैंने। तुम्हारी नजरें मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह ढूंढ रही हैं। ऐसे इंसान को मैं निराश नहीं करना चाहती, लेकिन सच, मैं बहुत थक चुकी हूँ।
1: मैं तुमसे कोई अलग नहीं हूँ, बस फर्क इतना है कि मुझे अचानक एक मंजिल नजर आने लगी है, और वो मंजिल तुम हो सिमरन।
0: तुम मुझे कमजोर बना रहे हो।
1: हमारी कमजोरी जिंदगी से भागने में थी सिमरन, जिंदगी जीना साहस का काम है, थोड़ा साहस जुटा कर देखो।
0: न जाने क्यों तुम्हारी हर बात पर हामी भरने को जी चाहता है, शायद इसलिए कि तुमने चुप रहकर मेरी जान बचाई है, या शायद इसलिए कि तुम्हें अभी भी इस पत्थर में एक इंसान नजर आता है।
1: तो क्या मैं हाँ समझूं? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारे बीते हुए कल के साथ। क्या मुझसे शादी करोगी सिमरन? रो नहीं।
0: या खुदा, मुझे माफ करना, मैं तेरी दुनिया को संग दिल समझती रही।
1: अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं सिमरन।
0: नहीं, मैं ठीक हूँ।
1: ओफो, ठंड ज्यादा है। लो ये मेरा कोट ओढ़ लो।
0: तुमने मोहब्बत की बोलों से मेरे दिल के दरीचे खोल दिए हैं, पीछे तो नहीं हटोगे अजनबी?
1: पहली बार पूरी ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे जो है उसे भला कैसे छोड़ दूंगा। अगर तुम उस पल यहाँ ना आई होती तो ये सुबह मुझे नसीब नहीं होती।
0: अरे हाँ, पूरी रात यूं ही गुजर गई। वो देखो, वो जहाँ जमीन और आसमान मिल रहे हैं वहां से सुनहरी रोशनी फूट रही है।
1: मैं उससे भी खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो सिमरन। क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत गले लगकर नहीं कर सकते?

अभी आप सुन रहे थे अजीमुद्दीन का लिखा नाटक अंधा मोड़। भाग लेने वाले कलाकार थे स्मित मेहता, डॉली मल्होत्रा, अरशद इकबाल, उषा चौधरी, ज्योत्सना मेहता, भारती ठाकुर, कमल जैन, बालेंद्र सिंह कुशवाहा और राम रतन सेन।

0: नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक अंधा मोड़, लेखक अजीमुद्दीन थे और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। अनूपपुर जिले में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैलियों की धूम है। जिले के पहाड़ी क्षेत्र पवित्र नगरी अमरकंटक से लेकर कोयलांचल क्षेत्र और जिले की सीमा में बसे बनगवा, डोला, डुमरकछार, बिजरुई, कुतमा, पसान सहित जिला मुख्यालय अनूपपुर में तिरंगा रैलियां जोश और उत्साह के साथ निकाली जा रही हैं। रैलियों के दौरान भारत माता की जय के घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया है। जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। देशभक्ति के नारों और गीतों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने हर घर तिरंगा अभियान की गतिविधियों को निरंतर आयोजित करने तथा कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल होंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा शासकीय सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित स्थान पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 14 अगस्त को ITI कैंपस अनूपपुर में द्वितीय शिविर आयोजित होगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। उप संचालक कृषि अजित कुमार ने जिले के किसानों से विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए बिना विलंब अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। वहीं नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने जिले के चारों विकासखंड अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ और जैथरी स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने 10 अगस्त को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक को लेकर विभागवार लंबित प्रकरणों और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उसकी समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी टीम को सक्रिय रखते हुए कार्यों की नियमित निगरानी और दैनिक प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए। 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय से NIC सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 24,130 हितग्राहियों के खातों में 1,44,78,000 रुपए की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संबोधन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। वर्षा ऋतु में मौसमी और जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। CMHO डॉ. अलका तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल संक्रमण, दस्त, उल्टी और टाइफाइड सहित जलजनित और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही नहीं बरतनी और स्वयं दवा लेने के बजाय निकटतम शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सीय परामर्श लेकर उचित उपचार लेने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति, नदियों, झरनों, मंदिरों, किलों और महलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लपटा की टीम ने प्राप्त किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। वंदे मातरम गौरवगान इसके गौरवशाली वर्षों के उत्सव मनाने का मतलब हमारी मातृभूमि के प्रति सम्मान, देश प्रेम और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना है। श्रोताओं, ये गीत आज़ादी के दीवानों के लिए प्रेरणा देने और उनके आज़ादी के जज्बे को बरकरार रखने का अच्छा माध्यम भी रहा है।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विश्व दर्पण।

0: कृषि अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कश्मीर पर आवामी एक्शन कमेटी का आज दुनिया भर में प्रदर्शन का आह्वान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका का पूरा नियंत्रण। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की और कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को हराकर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: यूक्रेन ने रूस के नोवोरो बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। हमले में रूस के 2 बड़े अनाज निर्यात टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुए हैं। काला सागर स्थित रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के नौसैनिक अड्डे पर रॉकेट, जेट और समुद्री ड्रोन से विशेष अभियान चलाया गया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि हमले में 2 फ्रिगेट समेत रूस के 4 युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस की ओर से इस दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने नौसैनिक नाकेबंदी का जिक्र किया। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, इसीलिए वो अमरीकी कार्रवाइयों का असरदार जवाब देने की क्षमता खो चुका है। श्री ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अब पहले जैसा क्षेत्रीय प्रभाव नहीं डाल सकता। ईरान की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लीबिया के पश्चिमी इलाके में ड्रोन हमलों की श्रृंखला के बाद एक बिजली सबस्टेशन में भीषण आग लग गई। हमले में सबस्टेशन पूरी तरह जल गया और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकारी जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के मुताबिक जाविया शहर का ये सबस्टेशन बिजली संयंत्रों से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक बिजली पहुँचाता था।
1: आग लगने के बाद बिजली घर बंद करना पड़ा। फिलहाल किसी भी संगठन ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इन हमलों के बीच पश्चिमी लीबिया की सरकार और जाबिया पर नियंत्रण रखने वाले सशस्त्र गुट के बीच तनाव बढ़ गया है। लीबिया कई वर्षों से अलग अलग प्रतिद्वंदी प्रशासन और सशस्त्र गुटों के बीच बटा हुआ है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन के पतन के बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ओमान के तट पर बड़ा तेल रिसाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ओमान की पर्यावरण एजेंसी के अनुसार टैंकर से लीक हो रहा तेल तट तक पहुंचना शुरू हो गया है। उपग्रह की तस्वीरों की समीक्षा करने वाले ऑयल स्पेल विशेषज्ञ जॉन अमोस के अनुसार तेल का फैलाव 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में हो चुका है। इससे रास मदरका के पास करीब 40 किलोमीटर तट और मसीरा द्वीप प्रभावित होने की आशंका है। कैरोलिन बेजेंगी नाम का ये टैंकर 30 जून को फंस गया था। टैंकर करीब 800,000 बैरल रूसी कच्चा तेल लदा था और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में है। टैंकर एक ऐसे द्वीप के पास रिस रहा है जो ओमान के समुद्री प्रकृति संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। ये इलाका अरब सागर की हम्पबैक व्हेल और सोकोट्रा कॉमोरेट समेत कई समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: मॉन्ट्रियल में कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने लर्नर टियन को 6-2, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टोरंटो में आज सुबह महिला सिंगल्स में कड़े और रोमांचक सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने एलेना रायबाकिना को पराजित किया। ये मैच 2 घंटे 50 मिनट तक चला। दूसरे सेमीफाइनल में स्वायतिक ने अलीना स्वितोलिना को 6-3, 1-6, 6-3 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बलूचिस्तान के सुरब जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कश्मीर पर आवामी एक्शन कमेटी का आज दुनिया भर में प्रदर्शन का आह्वान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। और कनाडा ओपन टेनिस में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल जोडर को हराकर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

अपने श्रोताओं की पसंद का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म जमीन आसमान से। आवाज़ हैं लता मंगेशकर की, गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। और पसंद करने वाले श्रोता हैं हमारे बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग और सृष्टि गदरे। यहीं से विवेक, वंदना और लवकुश। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमंती पंचोलिया। साथ ही चांदनी चौक गंडरई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन। यहीं से खुशी रौनक सेन। और महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। इन सभी की पसंद पर हम सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अब अगली फरमाइश पर हम जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उसे लिया है हमने फिल्म चुपके चुपके से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द हैं आनंद बख्शी के। इस गीत को संगीत से सजाया है SD परमन ने और फरमाइश की है आप सभी ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन तानिया, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर, घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू, ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आंखें, इस फिल्म का गीत अब हम अपने श्रोताओं की पसंद पर सुनवा रहे हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत को शब्दों में ढाला है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। और इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेग बिरक, मीका बिरक, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिद्या खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्ताबा खान, आफिया खान, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनरकर, वैशाली कटनरकर।

0: कभी कभी।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारंगा। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही। मोहाली चंडीगढ़ से हमें पत्र भेजा है टीडी मल्होत्रा ने, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा।

नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म अजनबी का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एक बार फिर राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिख भेजा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज़ आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का, तन्मय गजभिये, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासेर।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारंगा। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागत कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और ज़मीर खान ने। बाजार पारा बेमेत्रा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लकी सिन्हा। साथ ही पत्र भेजा है हमें महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानकपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है जुर्माना।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में। सबसे पहले सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस, इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही पलों बाद। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। भोपाल में वोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अब से कुछ देर में 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में महापौर मालती राय ने आज हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं प्रदेश भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13-17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति रक्षा कवर की है।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी एक विषय के ऊपर और सुनवाते हैं आपको बहुत ही मीठे मीठे गीत। कार्यक्रम में आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कबाड़, कचरे या किसी भी अनुपयोगी वस्तु से कुछ अच्छा, उपयोगी, सुंदर या कलात्मक बनाना। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद महोदया, मैं मुरैना मध्य से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ इस कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
0: क्या करते हैं हरविलास जी?
1: खेती किसानी करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अभी क्या चल रहा है?
1: इस समय बाजरे की फसल खड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी फसल है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पानी वानी ठीक से गिर रहा है?
1: बहुत ही अच्छा गिर रहा है, खेती के काबिल गिर रहा है।
0: अरे वाह, तो कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जहाँ आज का हमारा विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़ी चीज से कुछ अच्छा, सुंदर, कलात्मक बनाना। तो ऐसी कोई चीज आपने कहीं देखी हो या आप अपने घर में कभी कर चुके हो, आपके परिवार में किसी ने की हो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे।
1: कुछ ऐसी मैंने देखे है, अपने घर में ही देखे है महोदया। जैसे कोई रद्दी कागज या पुट्ठा वगैरह होते हैं, उनसे लोग पंखा बीजना बना लेते हैं, कुछ सजावट की चीजें बना लेते हैं, बल्ब वगैरह निकाल के उन्हें रंग भर के सजावट की चीज बना लेते हैं।
0: जी,
1: इस तरह की चीजें देखी हैं हमने अपने घर में।
0: कैसा लगता है आपको देखकर?
1: बहुत ही अच्छा लगता है, अनुपयोगी चीजों को उपयोग में लाना दोबारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने भी कभी बनाया इस तरह का कुछ या आपके परिवार में किसी ने?
1: नहीं, मेरे परिवार में तो बनाया, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया कुछ ऐसा।
0: अच्छा, कभी कोशिश करके देखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे महोदय।
0: अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो आपको याद रह गई हो कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बना दिया?
1: हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, एक छोटा सा बच्चा था
0: जी,
1: 12-14 साल का, उसने बनाया था
0: जी
1: फ्यूज बल्ब लेके, और जाने किस तरह उसने क्या चीज लेके रेडियो में से क्या जोड़ के उसने बल्ब बना दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था मुझे।
0: अरे वाह अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हरविलास जी आपसे बात करके। कार्यक्रम में इसी तरह फोन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, किनसे बात हो रही है?
1: हाँ मैडम जी, ग्राम कन्या विकास खंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू से बात कर रही हूँ मैडम जी। आप
0: ध्रुवाराम साहू जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आज त्योहार ही मना रहे हैं, हरियाली त्योहार।
0: कौन सा त्योहार मना रहे हैं?
1: हरियाली का त्योहार, जिसको अपने क्षेत्रीय भाषा में हरेली का त्योहार बोलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, क्या होता है इसमें?
1: इसमें ये होता है कि इस त्योहार के आते तक जो किसान है, खेतों में रोपा वगैरह है, वो सभी काम पूरा कम पूर्ण हो जाते हैं। और आज के दिन जो किसान होते हैं वो अपने जो हाल वगैरह है, उपकरण है, कृषि उपकरण, उनकी पूजा पाठ करते हैं मैडम जी।

0: अच्छा।
1: और तरह तरह की पकवान भी बनाते हैं,
0: जी
1: जैसे चीला हो गया, इधर ठेठरी खुरमी, इस तरह का जो बोलते हैं बड़ा वगैरह,
0: हाँ।
1: इस तरह का त्यौहार मनाते हैं मैडम जी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी आपके यहाँ होगी ये सब पूजा पाठ या फिर अभी चल रहा
1: हाँ
0: है?
1: नहीं नहीं अभी चालू है मैडम जी, अभी तो शुरुआत है, बस जो पकवान बनाने का है ना वो कार्यक्रम चालू है अभी।
0: अच्छा
1: और सबसे एक विशेष बात यह है कि जो बांस का जो गेड़ी बनाने का काम करते हैं बच्चे लोग, इसमें नृत्य भी करते हैं, चलते हैं मैडम जी।
0: अच्छा वाह वाह वाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस त्योहार की, आपको और आपके
1: हाँ
0: परिवार
1: आपको
0: को।
1: भी मैडम जी और सुनने वाले हमारे जो सभी श्रोता मित्र हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली
0: जी
1: त्योहार की,
0: बहुत
1: हरियाली
0: बहुत
1: त्योहार की।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे, और आज का विषय मैं आपको बता दूं, आज का
1: जी मैडम
0: विषय
1: जी
0: है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरा कबाड़े, किसी अनुपयोगी वस्तु से कुछ बहुत ही सुंदर सा कलात्मक या सजावटी सामान बनाना। तो ऐसा कुछ आपने कभी किया हो या फिर आपने किसी को करते हुए देखा हो, तो
1: हाँ
0: हम
1: मैडम
0: उसके
1: जी,
0: बारे में
1: हमें
0: बात
1: क्या है जो
0: करेंगे।
1: अपने पास कागज है, तो कागज को क्या है पानी में भिगा करके टोकरी बनाए थे मैडम जी हम लोग।
0: अच्छा, पानी
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: भिगोकर, मतलब किस तरह से?
1: हाँ हाँ पानी में क्या है उनको भिगा दिए 2 दिन तक, उसके बाद क्या है कागज एक प्रकार से पूरा विलय हो जाता है उसमें पानी में,
0: जी
1: और किसी जो पात्र जो टोकरी बनाना था टोकरी डाल दी, पुराने वाली जो टोकरी है उसमें, तो जो कागज होते हैं उसी के अनुरूप ढल जाते हैं, उसी के अनुरूप आकार निकल जाता है मैडम जी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिर
1: जी
0: उसका इस्तेमाल भी किया आपने?
1: हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करते थे मैडम जी।
0: अच्छा, और इसके अलावा कोई और वस्तु जो आपने किसी और को बनाते हुए देखी हो?
1: अब पुराने वस्तु ऐसे तो है मैडम जी, इधर बांस वगैरह से ऐसे तो कलात्मक कृतियां बनाई जाती है,
0: जी
1: हाँ बनाते ही हैं, जैसे
0: हाँ
1: सूप वगैरह बनाने हैं, टोकरी बनाना है, उस करते ही हैं।
0: जी
1: हाँ और एक और है मैडम जी, जैसे हम लोग इधर अभी अभी चलन में है कुछ देखने को मिलता है, जैसे खुमरी बोलते थे हम लोग, जो मोलाइन के पत्ते होते थे उसको डाल के, जैसे छाता नहीं होते थे, छाता से बढ़िया जो रोपा लगाने वाले हैं या फिर जो अहिर जाति के हैं गाय चराने वाले मवेशी चराने वाले वो उसको उपयोग करते हैं मैडम जी।
0: पत्तियों से बना छाता।
1: हाँ पत्तियों से बना छाता, वो क्या है जो बांस का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो पत्ते होते थे मोलाइन के जो पत्ते
0: जी
1: बोलते हैं
0: जी
1: उसको डाल के रखते थे
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: उपयोग करते थे मैडम जी। क्या है मड़ई मेला जब होता है ना, तो उसको जो हमारे जो अहिर जाति के हैं राउत जाति के जो लोग भाई लोग हैं
0: जी
1: वो नृत्य करते हुए जाते हैं मैडम जी, मतलब ये भी एक
0: अच्छा।
1: संस्कृति में शामिल है हमारे यहाँ का।
0: जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा दुर्वा राम जी आपसे बात करके, आपके त्योहार की, हरेली त्योहार,
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: उसकी भी
1: मैडम जी
0: आपको
1: आप लोगों
0: बहुत बहुत
1: को, और आपके
0: शुभकामनाएं
1: जो
0: एक बार फिर
1: आकाशवाणी
0: से।
1: मध्य प्रदेश है भोपाल है वहाँ कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा
0: जी
1: लगता है हमको,
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद
1: समय समय में क्या है विषय परक जो जानकारियां हैं, और
0: जी।
1: कहा जाए तो मैडम जी जो आकाशवाणी है वो हमारा संस्कृति का रक्षक भी है, परिचायक भी है, कोई भी त्योहार हो पर्व हो उत्सव हो उससे पहले हमको जानकारी मिल जाती है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्वाराम
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका
1: हेलो।
0: स्वागत है
1: हाँ जी
0: जी।
1: नमस्ते,
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है,
1: योगेश जांगड़े।
0: कैसे हैं आप
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: जी? कहाँ से बात कर रहे हैं,
1: बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: क्या करते हैं योगेश जी?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है,
0: खेती बाड़ी का काम है, तो अभी क्या लगाया हुआ है?
1: धान लगाया है।
0: धान लगाया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे, जहाँ एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा
1: जी
0: करते हैं। तो आज का
1: जी
0: विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि किसी भी अनुपयोगी कचरा कबाड़े वस्तु का पुनः
1: हाँ।
0: उपयोग करके इस्तेमाल योग्य बनाना, उसे कुछ सुंदर सा कलात्मक बनाना।
1: नहीं, हम तो प्रत्यक्ष किए हैं,
0: जी
1: क्योंकि जिस समय डीएड की पढ़ाई कर रहे थे तो
0: जी
1: उसमें तो होता है ही था कबाड़ से जुगाड़, तो
0: हाँ
1: ग्रुप में करते थे और काफी चीजें उनसे सीखे हैं। और घर में भी जैसे जैसे हमारे यहाँ महिलाएं हैं
0: जी
1: तो चूड़ी वगैरह का बढ़िया साज सज्जा बनाती है, एक्स्ट्रा जो कपड़े वपड़े बच जाते हैं उनका अच्छे से बना लेती हैं, या
0: जी
1: डब्बा वगैरह जो होते हैं तो मतलब इस तरह से उपयोग हो ही जाता है। जैसे चूड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, या थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो उनको मस्त डिजाइन बना के दीवार वगैरह में भी लगा देते हैं 100 पीस के तौर पर। जी
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके योगेश जी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: रजनी सोनी मैडम, बहुत दिनों के बाद में फोन लगा। अब तो टाइम ही बदल गया है तो फोन ही नहीं लगता।
0: ओहो रजनी जी, आप कोशिश करते रहा कीजिए, जैसे आज लग गया है वैसे और भी लग जाएगा। कहाँ
1: जी,
0: से बात कर रहे हैं रजनी जी?
1: हम बालाघाट जिला गांव भिड़ी,
0: अच्छा, क्या करती हैं रजनी जी?
1: हम हाउस वाइफ हैं दीदी। घर का अपना काम तो बहुत लगता है। हाँ
0: रजनी जी, आज का कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय है हमारा जो है
1: जी,
0: कबाड़ से जुगाड़िया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: जैसे साड़ी निकलती है अपनी तो
0: जी
1: अपन पाईमेटी बनाते हैं, ये जैसे पैर पोछने वाली जैसी अपन बनाते
0: हाँ
1: हैं, क्रूसिया से बना लिए, जैसे
0: जी
1: ब्रश से बनाते, ब्रश से भी बनती है।
0: हाँ,
1: हमारे यहाँ क्या है, जैसे साड़ी वाड़ी निकलती है, जैसे नई साड़ी है अपने को उपयोग नहीं करना है तो हम उसका भी बना लेते हैं।
0: अच्छा, तो और क्या
1: जी
0: क्या बनाते हैं?

0: मतलब साड़ी के पोछे के अलावा भी कुछ कुछ बनाते हैं?
1: नहीं, जैसे पाई मेटी बनाना, जैसे क्रूसिया से बनाते हैं, या फिर अपने बहुत से अपने जैसे ब्रश में भी बनती है, ब्रश से भी बना लेते हैं।
0: ब्रश से क्या बनाते हैं?
1: ये अपने मंजन करने के ब्रश रहते हैं ना, इससे भी
0: जी
1: बनती है पाई मेटी बहुत अच्छी अच्छी जी।
0: अच्छा, उसका क्या इस्तेमाल होता है उसके अंदर?
1: जैसे ब्रश है तो ब्रश को पीछे साइड से अपन थोड़ा सा छेदा करके, और उसमें एक अपने जैसे साड़ी की एक जो रहती है रस्सी, उसको बांध लो एक छोर को, और ऊपर साइड फिर जैसे अपन ये इसमें बनियान बनाते हैं, उसमें ऐसा उल्टी से फंदा नहीं डालते क्या, फंदा
0: अच्छा
1: डालते हैं, और फिर वो फंदा दोनों हाथ से दोनों तरफ डालते हैं दो गोला से, फिर उसके
0: अच्छा
1: बाद उसको खसकाते जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे गोल गोल गोल गोल करके अपन इसको सिलाई लगा लो,
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे
1: फुल
0: वाह,
1: पाई
0: अरे
1: मेटी बन जाती, फिर जैसा आकार की बनाना वैसी बन जाती
0: वाह रजनी जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी आपने दी
1: जी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, मेरा नाम मैडम जसराम जाटव, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम, बढ़िया है।
0: अच्छा, कार्यक्रम का विषय मैं आपको बता देती हूँ। आज का विषय है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या कबाड़ से जुगाड़। ऐसे कोई भी पुरानी घर में पड़ी हुई वस्तु से कुछ नया या बहुत सुंदर सा कुछ बनाना।
1: कुछ लोग जो क्या है, जो खराब चीज होती है तो उसका कुछ खिलौना बना लेते हैं, कोई कुछ बना लेता है, ऐसा होता है मैडम।
0: अच्छा, और इसके अलावा कुछ और देखा है आपने करते हुए किसी को?
1: पानी का जो बाटल होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको कट करके नहीं, इसपे गुड़िया भी बना लेते हैं। गुड़िया बना के इसपे अच्छा लगता है, दिखने में अच्छी लगती है वो।
0: पानी की बोतल से?
1: हाँ, पानी की
0: अरे
1: बोतल
0: वाह
1: से गुड़िया बना लेते हैं। इसपे
0: जी।
1: क्या है, इसको चीट चीट गए वो तो इसपे बना लेते हैं मैडम।
0: हाँ, और ये
1: हाँ
0: तो बड़ा अच्छा है ना ऐसा करना, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता। जो बाहर पानी की बोतलें मिलती हैं वो तो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कचरे में ही जानी होती हैं। उससे अगर इस तरह का कुछ बना ली कोई तो कितनी अच्छी बात है। तो बड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है।
1: हाँ मैडम, अच्छा लगता है। क्या प्लास्टिक अपन फेंकते हैं तो भी क्या, बारिश का पानी रुक जाता है, इससे जमीन में पानी नहीं जाता है।
0: जी।
1: हाँ तो हम तो मैडम क्या आसपास देखते हैं तो हम तो समझाते हैं जी लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक को फालतू नहीं फेंकना चाहिए, कचरे के
0: अच्छा
1: वहां फेंकना चाहिए।
0: जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जसराम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी
1: हाँ मैडम,
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार मैडम जी, चंद्रवान नामदेव ग्राम पोस्ट देरी डिस्ट्रिक्ट छतरापुर एमपी से बात कर रहे हैं। दीदी
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो ठीक है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं?
0: हम सिलाई का काम करते हैं दीदी।
1: अच्छा, क्या बनाते हैं? स्पेशलिटी क्या है आपकी?
0: हम पेंट टाइप पेंट सिलते हैं।
1: पेंट सिलते हैं आप?
0: हाँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चंद्रबान जी, कार्यक्रम जो है उसमें एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं, तो आज का विषय मैं आपको बता दूं। आज का विषय है कबाड़ से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें हम कोई भी पुरानी रखी हुई वस्तु जो घर में इस्तेमाल में नहीं आ रही उसका कुछ नया बना लेते हैं और कुछ उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं।
0: हमारे यहाँ तो आते हैं खरीदार, उनको बेच देते हैं और हमारा बच्चा बना लेता है कबाड़ में से कुछ न कुछ नया सामान की जुगाड़ बना लेता है। उसने एक जो बूफर बनाया है जैसे रेडियो था, उसकी चुम्बक, उसकी मशीन से उसमें एक बात चिप डाल ली मोबाइल की तो बजता है बूफर।
1: अच्छा, मतलब पुराना जो खराब रेडियो था उससे उन्होंने स्पीकर जैसा कुछ बना लिया।
0: हाँ, बूफर बना लिया, उसकी चम्मच भाई, उसकी बाद मशीन होती है जो टाँके लगी जाते हैं। हमने नया रेडियो लिया है, बेकार होगा तो उसे बोलो जब चम्मच निकाल के हम बूफर बना ले रहे।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, इसके अलावा उसने एक बहु बनाया था, क्या बोलते ये वो डब्बा बब्बा बना ले तो चकाका लगा कर चला उस रात
1: पुराने
0: गाड़ी।
1: डब्बे में पहिए लगा करके उसको गाड़ी जैसा बना लिया,
0: हाँ
1: खिलौना हो गया।
0: हाँ खिलौना हो गया उसके लिए।
1: कितना बड़ा है आपका जो बच्चा है?
0: हमारा बच्चा 10 साल का है।
1: अच्छा, 10 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो से अपना दूसरा स्पीकर जैसा बना लिया।
0: हाँ,
1: क्या नाम है आपके बच्चे का?
0: हमारे बच्चे का नाम है कृष्ण नामदेव।
1: कृष्ण नामदेव।
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत देर से ट्राई कर रहा है कि फोन लगा लिया जाए, भोपाल में व्यस्त बता रहा
1: जी
0: था।
1: जी जी जी बहुत सारे कॉलर्स का फोन आता है, पर बहुत अच्छा किया आपने लगाया फोन, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: हमको भी, हम सब आकाशवाणी से जो है भोपाल छतरपुर का तो हम दिन भर रेडियो सुनते हैं, अभी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे तो
1: जी
0: फोन रिसीव हो गया, सोने की पहले बात कर ली जाते, अभी बंद कर दिया था बात भाई जा, तो फिर चालू कर ले रेडियो।
1: जी जी जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं, हमें फोन करते हैं और
0: आप
1: कार्यक्रम
0: लोगों
1: सुनते
0: की
1: हैं।
0: आवाज बहुत बढ़िया लगती है, बोलने का तरीका इतना बढ़िया लगता है कि दिन भर अपना सिलाई करते रहे, दिन भर रेडियो सुनते
1: अरे
0: रहे।
1: वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मैं रतलाम से, मैं सरला चावड़ा बोल रही हूँ।
0: सरला चावड़ा जी, रतलाम से।
1: जी हाँ,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ साहब, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: बहुत बढ़िया
0: जी, क्या करती हैं सरला जी?
1: जी, मैं टीचर थी, अब मैं टीचर नहीं हूँ। पहले टीचर थी, अब रिटायरमेंट हो गया मेरा।
0: अच्छा, रिटायर्ड टीचर हैं आप।
1: जी हाँ, और मैं कक्षा एक में पढ़ती थी, तब से ही मैं इंदर भोपाल की और विविध भारती की फैन हूँ 1971 से।
0: अरे वाह सरला जी, बहुत अच्छा लगता है इतने पुराने जो हमारे श्रोता होते हैं उनसे बात करने में।
1: जी हाँ।
0: जी, बहुत बहुत

0: धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए आकाशवाणी को
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।
0: जी। कार्यक्रम का विषय मैं आज का आपको बता दूं, कार्यक्रम का विषय है कबाड़ से जुगाड़ या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
1: कुछ क्रोशिया से बना लेते हैं, कुछ पैर पोस से बना लेते हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए खिलौने, उनके फ्रॉक वगैरह डिजाइन वगैरह
0: अच्छा
1: लेस वगैरह लगा के बना लेते हैं। एयरफोर्स बनाना छोटे बच्चों के लिए,
0: जी
1: कुछ भी मतलब उपयोग में आने वाले उनके गुड्डे गुड़िया के कपड़े वगैरह सिलना, लेस वगैरह लगा देना, छोटे भगवान के कपड़े सिल देना, उनके पोशाक सिल देना, नए नए छोटे मोटे कपड़े से।
0: अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। सरला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
1: जी
0: लिए।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति रक्षा कवर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में तीसरा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। भोपाल श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ये प्रदेश भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर

अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत।

यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार, कवर कॉलोनी बड़वास।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत फिल्म कभी कभी से आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। खयाम का संगीत है और गीत लिखा है साहिर ने। पसंद आप सभी की नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की।

आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया। आप सभी की फरमाइश है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनी के इस गीत की, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल

स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

बिठूर गए त्रिकालज्ञ ज्योतिषी तात्या साहेब से पेशवा बाजीराव ने अपने सभासद मोरोपंत तांबे की पुत्री मनु के लिए सुयोग्य वर की तलाश करने का अनुरोध किया। मनु की जन्म पत्रिका से चमत्कृत तात्या दीक्षित ने उसके भावी की संभावनाओं को देख

0: जीतते हुए झांसी के विधुर राजा गंगाधर राव से मनु के परिणय का विधान निर्धारित किया। जनपत्रिका के संयोग मनु को झांसी बुला रहे थे।
1: बुंदेलखंड की एक मराठा रियासत है झांसी। बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल के कीर्ति गौरव से आप्लावित एक वीर भूमि, जहाँ के कण कण में आत्म बलिदानी रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं रची बसी हैं, जहाँ हवाओं में और दिशाओं में आल्हा की अनुगूंज सतत स्मरण दिलाती रही।

भारत के हृदय प्रदेश की भूमि बुंदेलखंड से छत्रपति के उत्तराधिकारी मराठों के संपर्क का सिलसिला पेशवा बाजीराव प्रथम के काल से ही घनिष्ठ रूप से चला आ रहा था। छत्रपति शिवाजी ने युवक छत्रसाल को अपनी इतिहास प्रसिद्ध भवानी तलवार सौंपी थी और छत्रसाल ने इस अनूठी तलवार की गरिमा का मान बढ़ाते हुए 52 स्वातंत्र युद्धों में आक्रांताओं को इतिहास के न्याय का मजा चखाया था। बुंदेलखंड के कवियों ने कहा।

0: झांसी की रियासत इन्हीं महाबली छत्रसाल से राजा गंगाधर राव के पुरखों को मिली थी। अंग्रेजों के प्रभाव विस्तार के दौरान झांसी को भी ग्रहण लगा। पेशवा का प्रभुत्व संधि से तिरोहित हुआ।
1: झांसी के साथ हुई संधि की व्यवस्था के अनुसार रियासत के राजा गंगाधर राव थे और रियासत का कामकाज और प्रबंध कंपनी के कारिंदे चलाते थे, लेकिन गंगाधर राव झांसी के राजा थे।
0: गंगाधर राव विदुर थे और झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी तभी जन्म ले सकता था जब वे पुनर्विवाह के लिए राजी हों।
1: जन्म पत्रिकाएं मिल जाने के बाद तात्या दीक्षित ने राजा गंगाधर राव की विवाह के लिए सहमति प्राप्त की। निश्चय हुआ कि विवाह झांसी में ही होगा। मोरोपंत विठूर छोड़कर झांसी आ जाएंगे और दरबार में सामंत बनाए जाएंगे।
0: इस तरह मनु का नाता विठूर से छूटा और झांसी में उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अब न बाला गुरु की व्यायामशाला थी, न पेशवा बाजीराव के स्नेह की छाव, न राव साहब, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे बचपन के संगी साथी, न गंगा का किनारा, न बाबुल का देश।

अब मनु झांसी की हुई, उसे नया संबोधन मिला लक्ष्मीबाई, नया विरुद्ध मिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।

0: सुंदर, बहुत सुंदर। नृत्य में तो तुमने अद्भुत प्रवीणता प्राप्त की है। क्या नाम है तुम्हारा?
1: रानी साहिबा, मेरा नाम मुंदर है और यह है सुंदर, ये काशीबाई, ये रही झलकारी। हम सब आपकी दासियां हैं श्रीमंत, आपकी सेवा टहल के लिए।
0: दासियों की आवश्यकता मुझे नहीं है मुंदर, मैंने अपना काम अपने हाथ से करना सीखा है।
1: ऐसा मत कहिए रानी साहिबा, फिर हमारा क्या होगा, हम तो बिना काम के हो जाएंगे। राजा महाराजाओं की तो शोभा ही दास दासियों सेवक चाकरों से बनती है। राजा गंगाधर राव ने आपकी सेवा के लिए 16 दासियां नियुक्त की हैं।
0: ये सभी मेरी 16 सखियां होंगी, बिना किसी छुटाई बढ़ाई के, बराबर की मेरी सखियां।
1: सेवा टहल अगर आपको रुचिकर नहीं है महारानी, तो हम गायन और नृत्य से आपका मनोरंजन करेंगी और आपका मन बहलाएंगी।
0: लगता है झांसी में नाचने गाने का कुछ ज्यादा ही चलन है। राजा साहब की रंगशाला के चर्चे तो दूर दूर तक हैं।
1: ठीक ही सुना है सरकार ने, हमारे राजा साहब गुणों के पारखी हैं और कलाओं के संरक्षक भी। गायन, वादन, नृत्य और कविता खूब फल फूल रही है झांसी में। एक से एक गुड़ी है झांसी के दरबार में, आप देखेंगी।
0: हम देख रहे हैं मुंदर, लेकिन हम जो देख नहीं रहे वो भी है कि नहीं तुम्हारी इस झांसी में?
1: वो क्या है सरकार?
0: हथियार, आत्मरक्षा के लिए हथियार, सैनिक, तलवार, तमंचे, तोप, बारूद, गोले, घोड़े, इनके बिना तो राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। राजा और रियासत की शोभा तो इनसे ही बनती है।
1: शोभा के लिए ही तो है सरकार।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?

0: झांसी के राज में फौज पलटन हाथी घोड़े हथियार और असलाह सभी कुछ है सरकार, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती सिवाय इसके कि सवारी के आगे पीछे चले शोभा के जुलूस में। महारानी,
1: क्यों? फिरंगियों से अपनी संधि है महारानी, फिरंगियों की फौज झांसी में रहती है, सेंत मैत में नहीं। झांसी का राज्य उनका खर्चा उठाता है, इसके बदले में उनकी फौज राज्य की रक्षा के लिए तैनात है।
2: तुम्हारे राजा साहब को तो फिर कुछ करना नहीं होता होगा, मौज करते होंगे।
1: करना क्यों नहीं होता रानी साहिबा, राजकाज के कुछ कम झंझट होते हैं, वो राज करते हैं, रियाया की देखभाल, न्याय, बंदोबस्त, उनकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, राजा के लिए मौज की फुर्सत ही कहाँ है।
2: राजा की रंगशाला के चर्चे दूर दूर तक हैं, वहां क्या होता है?
1: रंगशाला में और क्या होगा, नाटक होता है महारानी, राजा खुद भी हिस्सा लेते हैं।
2: सचमुच नाटक में खुद भी हिस्सा लेते हैं? बड़ा काम है। क्या करते हैं नाटक में?
0: कभी दुष्यंत बनते हैं तो कभी भरतहरि, कभी
2: बस बस, मैं जान गई। राजा साहब जो हैं नहीं, वो नाटक में होते हैं। हमारे उधर अवध में भी एक नवाब हैं जो इंद्र सभा रचाते हैं। पता नहीं इस देश के राजाओं और नवाबों को कौन से शौक हैं, वो आज को भूल गए हैं। उठती हुई आंधियों को अनदेखा करके वो कल्पना की रेत में आंखें छिपाए बैठे हैं। तो ऐसी है झांसी की रंगशाला।
0: सरकार, रंगशाला में मोतीबाई और जूही भी हैं।
2: कौन है वो?
0: रंगशाला के अभिनेत्रियां हैं, क्या नाचती हैं सरकार, कभी देखेंगी तो कहेंगी क्या बात है। राजा की रंगशाला की शान है ये दोनों, मोती और जूही, और ध्रुपद धमार होरी के गायक उस्ताद मुगल खां।

0: हमें इन बातों की समझ नहीं है मुंदर। कलावंतों गुणवंतों का साथ कभी मिला नहीं। हमारी शिक्षा दीक्षा तो बाला गुरु के अखाड़े में हुई है। हमारे संगी साथी रहे हैं नाना साहेब, राव साहब और रामचंद्र राव, जो तात्या टोपी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पेशवा बाजीराव के बिठूर में ये सब नहीं होता था। पेशवाई धोखे से फिरंगियों ने छीन ली। इसका संताप था, शोक था, और हम कल्पना करते थे, तदबीरें सोचते थे मातृभूमि की तकदीर बदलने की। इस रंगारंग जीवन के लिए फुर्सत ही कहां थी। झांसी आकर या झांसी की रानी बनकर हम अपने स्वातंत्र्य स्वप्न को तो स्थगित नहीं कर सकते। सुनो सुंदर, मुंदर, काशी।
1: हुकुम सरकार।
0: हमारी सहेली बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो हम कहें।
1: आज्ञा करें सरकार।
0: तुम्हें व्यायाम करना होगा, प्रतिदिन अखाड़े में मलखंब और कुश्ती का अभ्यास करना होगा, घोड़े पर सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाना भी आना चाहिए।
2: ये तो बड़े कठिन काम है सरकार, और फिर औरतें ये सब कहाँ करती हैं?
0: जब झांसी के पुरुष ये सब भूल गए हैं तो स्त्रियां करेंगी।
1: करेंगी सरकार, करेंगी, आपकी आज्ञा सिर माथे सरकार। मगर रानी साहिबा ये सब हमें आता ही नहीं, सिखाएगा कौन?
0: हम सिखाएंगे। और फिर बिठूर से बाला गुरु जी को बुला लेंगे।
1: बाला जी तो पुरुष हैं, हमारी लाज शर्म

0: मर्यादा का क्या होगा सरकार?
1: तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए ही तो ये विधान है सखी। स्वयं इतनी शक्ति प्राप्त करो कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत न कर सके। यही योगधर्म है।

0: महाराजाधिराज राव गंगाधर राव के स्त्री चरणों में प्रणाम। फिरंगी हाकिम कप्तान गॉर्डन दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं सरकार।
1: लगता है फिर कोई फरमान लेकर आए हैं, आने दो।
0: जो आज्ञा सरकार।
1: आइए गार्डन साहब, आइए, पधारिए पधारिए। सब कुशल तो हैं? आसन ग्रहण करें। कहिए कैसे आना हुआ?
2: सब आपकी कृपा है, शुक्रिया शुक्रिया। किसी खास कारण से तो नहीं राव साहब, मैं तो आया था ये बतलाने के लिए कि कल आपका नाटक बहुत अच्छा रहा।
1: जी आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे कलाकारों का कमाल था ये सब।
2: लेकिन क्या कहते हैं वो उसे, हाँ डायरेक्शन वो तो आपने किया था ना, सुर ताल अभिनय को साधने का बड़ा काम। वाह वाह।
1: धन्यवाद। ये तो हमारा ही काम है, सूत्र संचालन, राजा और नायकों का, और खेल में खिलाड़ियों का। कौन अभिनेता कब और कहाँ क्या करेगा ये तो सूत्रधार ही निश्चित करता है।
2: ओ दुरुस्त फरमाया आपने राजा साहब, दुरुस्त फरमाया। लेकिन नाटक की इबारत तो लिखी हुई होती है ना, उससे बाहर तो आप ही नहीं जा सकते। और मैंने तो सुना है कि आपके धर्म में सब कुछ पहले ही तय और लिखा हुआ है, रत्ति भर भी इधर उधर नहीं होने को सकता।
1: आप कर्मफल की बात कर रहे हैं गॉर्डन साहब? हाँ, हम मानते हैं कि कर्मों का फल पहले से तय है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये तो हमारी जीवन दृष्टि है, इसीलिए हम अच्छे अच्छे काम करते हैं।
2: वेल, बेशक नाटक खेलना भी एक अच्छा काम है।
1: गॉर्डन साहब, हम सिर्फ नाटक नहीं खेलते, राज प्रबंध के दूसरे दायित्व भी हम पर हैं। हमारी रैयत हम पर विश्वास करती है, हम उसके प्रतिपालक और संरक्षक।

0: कंपनी बहादुर की सरकार इसे मंजूर करती है। राजा साहब, आप हमारे दोस्त और साथी हैं। आपको हमने झांसी का राजा तस्लीम किया है और राजकाज में हाथ बटाने के लिए फिरंगियों की फौज आपकी सेवा में तैनात है।
1: लेकिन उस फौज का खर्च तो झांसी को उठाना पड़ता है। हमने अपना एक बड़ा इलाका उसकी उगाही के लिए आपको दिया है।
0: वेल, आप अपने कारिंदों को भी तो तनख्वाह वगैरह देते हैं ना? देते हैं ना? इसमें अजीब क्या है? फिर फिरंगियों की फौज आपके कितने काम आती है?
1: लेकिन वो तो आपके लिए लड़ेगी गॉर्डन साहब। हमें तो हर हाल में अपने ही सिपाहियों का भरोसा है जो हमारा नमक खाते हैं।
0: नमक? नमक, यू मीन सॉल्ट? नो नो नो नो नो, राजा साहब, वफादारी का ये सूल अब नहीं चलता। समाना बदल रहा है। अब लड़ने वालों को रुपया चाहिए, रुपया, दौलत। राजा साहब, दौलत ही एक अकेला मकसद है।
1: लेकिन ये एक व्यापारी का दृष्टिकोण है, वीरता का नहीं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता गॉर्डन साहब।
0: वेल, अब तो हो रहा है राजा साहब। कितने निश्चिंत हैं अब आप। सारी चिंताएं हमारे सिर, और आपके पास बस फुर्सत ही फुर्सत, आराम ही आराम। नाटक खेलें या फिर शिकार करें, पूरी तरह स्वतंत्र।
1: नहीं गॉर्डन साहब, नहीं, स्वतंत्रता की ये समझ हमारी नहीं है। वास्तव में आप में और हम में सिर्फ चमड़ी के रंग का ही फर्क नहीं है, और भी कई अंतर हैं। हमें लग रहा है कि ये साथ ज्यादा नहीं निभेगा। आमना सामना तो होना ही है।
0: वेल, मैं उम्मीद करता हूं राजा साहब हमारी दोस्ती बनी रहेगी। आखिर हम आपके खैर ख्वाह हैं। आपके लिए हम अपनी जान दे देंगे।
1: और बदले में जान ले भी लेंगे। यही तो सौदेबाजी का चलन होता है। इस हाथ ले, उस हाथ दे।
0: ओ, इन बातों को छोड़िए राजा साहब, और कुछ बताइए, रानी साहिबा कैसी हैं?
1: कैसी हैं? अच्छी हैं। ये आपकी दिलचस्पी का विषय तो नहीं है?
0: ओ, दोस्त हैं ना हम आपके, इसीलिए घर परिवार की खबर तो रखना ही चाहिए ना। सुना है कि रानी साहिबा ऐसे काम करती हैं जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए।
1: जैसे?
0: तीरंदाजी, तलवारबाजी। सुना है वो झांसी की पुरानी थोपे ठीक करवा रही हैं और गोला बारूद ठलवा रही हैं।
1: काफी जानकारी रखते हैं आप।
0: झांसी का बच्चा जानता है कि रानी साहिबा औरतों की एक पलटन तैयार कर रही हैं।
1: ये आपका विषय नहीं है गॉर्डन साहब।
0: बेहद भी मुआफ कर रहे हैं राव साहब। कंपनी सरकार जानना चाहती है कि इस तैयारी का मकसद क्या है, किसके खिलाफ लड़ेगी औरतों की पलटन।
1: आप जमा खातिर रहें, आप तो हमारे दोस्त हैं, है ना? आपसे लड़ने का तो सवाल ही नहीं है।
0: ओ, बेशक बेशक, मगर हमने आपसे वायदा कर रखा है कि अगर आपको लड़ना पड़ा तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है ना राजा साहब? राजा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि झांसी की रियासत में रानी साहिबा का शुभागमन किसी कारण से हुआ है।
1: कैसा कारण?
0: यही कि रियासत के उत्तराधिकारी को जन्म दें, वह भी बेटा जो आपके बाद झांसी की गद्दी संभाल सके। कंपनी सरकार को इसकी बहुत चिंता है, बहुत चिंता।
1: लेकिन हमारे घरेलू मामलात की चिंता कंपनी को नहीं करनी चाहिए।
0: वेल, ठीक फरमाते हैं राजा साहब, ठीक फरमाते हैं। हम उनकी चिंता भी नहीं करते, लेकिन ये घरेलू मामला नहीं है राजा साहब। इससे रियासत की रियाया का और हमारा भी संबंध जुड़ा हुआ है। आखिर हम ही तो ये तय करेंगे कि झांसी की गद्दी पर कौन बैठे।
1: ये तय करने वाले आप कौन होते हैं?

0: बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का देहावसान।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की तीसरी कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 5,785 से अधिक रोजगारों के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। भोपाल के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आज नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। नौका तिरंगा यात्रा में 100 से अधिक नावों पर सवार होकर युवा खिलाड़ी प्रतिनिधि और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। महापौर मालती राय ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पूरे प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं, वक्त है हमारे महिला कार्यक्रम का। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

बहनों नमस्कार, समय है कार्यक्रम महिला सभा का और साथ है आप सभी श्रोता बहनों का। आपके इस साथ को और अधिक रोचक, मनोरंजक और जानकारी परक बनाने के लिए आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। मौसम है बारिश का और वर्षा ऋतु अभी पूरी तरह से हम पर मेहरबान नहीं हो पा रही है बहनों। वर्षा की रिमझिम फुहारें सावन के महीने में तो शायद ही किसी को अच्छी ना लगती हों। प्रकृति ने और ईश्वर ने हमें हवा पानी तो दिल खोल कर दिया है बहनों, और ये अब हम पर निर्भर है कि हम

कितना सहेज कर अपनी अगली पीढ़ी को दे पाते हैं, हम खुद ले पाते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति प्रदत्त उपहारों को सहेज कर रखना जरूरी कर दिया है। अब देखिए ना, लाखों करोड़ों पानी की बूंदें धरती पर आती हैं, पर हम उनमें से कितना पानी सहेज पाते हैं? वर्षा का ज्यादातर पानी नदियों में बहकर चला जाता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, और वहीं दूसरी ओर जब गर्मी आती है तो पानी की कमी का पता भी चलता रहता है। तो ऐसे में एक छोटी सी सोच बड़ा बदलाव ला सकती है, और इसी सोच के साथ भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का संदेश बहुत सरल है बहनों, जहां वर्षा हो वहीं, और जब वर्षा हो तभी उसका संग्रह करें, यानी बारिश की हर बूंद को बचाने का प्रयास करें। असल में बहनों, आबादी बढ़ रही है, भूजल का स्तर कम हो रहा है, और बदलता मौसम हमारे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो अगर अभी से हम गंभीरतापूर्वक जल संरक्षण का प्रयास नहीं करेंगे तो स्थिति आने वाले समय में बहुत विकट हो जाएगी। तो अब हम ये सोचें कि हम जल संग्रह कैसे कर सकते हैं, पानी हम कैसे बचा सकते हैं। तो बहनों, इसके लिए बहुत छोटे छोटे प्रयासों की ज़रूरत है, छोटी छोटी कोशिशों की ज़रूरत है। अपने घर की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर लगवाएं, पुराने तालाबों और कुओं की सफाई करना, जलाशयों का संरक्षण करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ये सारे ही कदम वर्षा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बहनों, जब तक जन भागीदारी यानी कि हम सबकी भागीदारी नहीं होगी तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। जब हर नागरिक, हर परिवार, हर विद्यालय और हर ग्राम पंचायत इस दिशा में आगे आएंगे तभी हमें इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। बहनों, पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जल संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो बहनों, इस बारिश हम जरूर बचाएंगे बारिश की बूंदों को, है ना? तो चलिए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: अब हम आपको लिए चलते हैं कथा कुंज की ओर। कथा कुंज के अंतर्गत हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चेतना का प्रकाश। कहानीकार हैं नीलम शरद।
1: दरवाजे पर घंटी बजी तो निशा ने हाथ की साड़ी जो उसने अलमारी से पहनने के लिए निकाली थी पलंग पर फेंक कर दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर महरी को देखकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि बिना बताए वो दो दिन से नदारद थी। निशा ने सोचा था कि आते ही उसको आड़े हाथों लेगी, आखिर उसे 500 रुपया महीना देते हैं, कोई फ्री में काम थोड़ी कराते हैं। लेकिन महरी के सामने उसकी ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो स्वर को कोमल बनाते हुए बोली, बसंती कम से कम कहकर तो छुट्टी लिया करो। क्या बताएं बीबी जी, कहते हुए उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया तो निशा को बीच में ही टोकना पड़ा। अच्छा अच्छा, अब जरा जल्दी जल्दी काम निपटा दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। टिंकू अभी तक सो रहा है, कल से ही उसे कुछ बुखार हो रहा था। जुकाम खांसी तो काफी दिनों से चल रहा था, पर समयाभाव के कारण वो उसे दवा ना दिला सकी थी। उसके अपने भी सिर में सुबह से दर्द था। उसने पिंकी को आवाज दी, बेटी पिंकी मेरे लिए एक कप कड़क चाय तो बना दे। तुम खुद बना लो मम्मी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल से मेरे एग्जाम हैं, पिंकी ने दो टूक जवाब दे दिया था। निशा की आंखों में दुख के आंसू छलछला आए थे, सुबह से ही वो बहुत तनावग्रस्त थी। इधर टिंकू आवारा लड़कों की संगत में रहने लगा था। वैसे वह उसको तो डरकर नहीं बताता था, पर वो अपनी सारी बातें अपनी बड़ी बहन पिंकी को बता देता था। इसी से उसे सारी बातें मालूम हुई थीं। वो घर में चोरी करने से लेकर धूम्रपान और ड्रिंक भी करने लगा था। एक बार टिंकू के बारे में पिंकी ने जो बातें उसे

बताई, उन्हें सुनकर तो निशा सिहर उठी थी। उसे चिंता हो गई थी कि कहीं बेटे को कोई गंदी बीमारी ना जकड़ ले। अगर ऐसा हो गया तो टिंकू की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। निशा ने टिंकू को खूब डांटा, समझाया और प्यार से नसीहत भी दी। पर गंदे दोस्तों की सोहबत कोई आसानी से थोड़ी छूटती है। पर वो क्या करती, घर के साथ ही ऑफिस की जिम्मेदारी भी तो उसके सिर पर थी। उसके पास समय अतिरिक्त होता ही कहाँ था जो कि वो बच्चों पर ध्यान दे पाती। एक बार से उसकी जिंदगी यंत्रवत हो गई थी और जब पति नवीन ऑफिस के काम से बाहर चले जाते थे तब तो और अधिक जिम्मेदारियां उसे निभानी पड़ जाती थीं। निशा ने टिंकू के बारे में सब कुछ पति को बता दिया, अपनी चिंता भी जाहिर कर दी। पर अगले दिन ही नवीन को 2 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ गया। इस पीरियड में वो विशेष परेशान हो गई। खींच और क्षोभ से भरी निशा बच्चों पर बरस पड़ती, जरा जरा सी बात पर उनकी धुनाई भी कर देती। मार खा खा कर बच्चे और अधिक जिद्दी और उदंड हो गए थे। एक दिन पिंकी ने बताया कि एक नुकीला तार गड़ जाने से टिंकू के हाथ में घाव हो गया है। चूंकि तार लोहे का नुकीला था इसीलिए निशा को चिंता हुई। उसने टिंकू को 50 का नोट देकर कहा कि क्लिनिक जाकर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना। वैसे तो निशा खुद ही उसे इंजेक्शन लगवाने जाना चाह रही थी पर ऑफिस जाने की हड़बड़ी के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। उधर दूसरी ओर टिंकू इंजेक्शन लगने के डर के कारण क्लिनिक नहीं गया। दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खाकर उसने रुपए खर्च कर दिए और घर आकर कह दिया कि मैं इंजेक्शन लगवा आया हूँ। उधर ऑफिस में निशा को अपराध बोध होता था कि वो बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, सही माँ होने का फर्ज नहीं निभा पा रही है। उसे खुद लगता था कि मानो वो एक मशीन बनकर रह गई है। निशा को ध्यान आया कि पड़ोस वाली मिसेस श्रीवास्तव उसके मुकाबले कितनी कम पढ़ी लिखी हैं, गांव की भी हैं, तो भी उनके बच्चे कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं जो हमेशा खिले खिले से दिखते हैं। उनका कितना सुखी परिवार है जबकि उनकी फैमिली इनकम हमसे कितनी कम है। निशा के हाथ फाइलों पर यंत्रवत चलते जा रहे थे पर मन घर की तरफ चुंबक की तरह से खींचा चला जा रहा था। दफ्तर से घर पहुंची तो पाया कि उसके ननन नंदोई अपने 3 बच्चों के साथ आए हुए हैं। उसने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली और मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। पर ननन के 3ों बच्चे अत्यंत फूहड़ थे, दिन भर मार पिटाई गाली गलौज तोड़ फोड़ करते रहते थे और उसे तो पूरे समय रसोई में घुसे रहना पड़ता था। मेहमानों को तमाम व्यंजन बना बना कर खिलाने में ही पूरा वक्त बीत जाया करता था। वो परेशान हो गई थी। हफ्ते भर बाद ऐश करके वे विदा हुए। विदाई में भी उसे सारे शिष्टाचार निभाने पड़े, तोहफे देने पड़े और विदाई में परंपराओं का पालन करना पड़ा। नवीन टूर से वापस लौटे तब तक निशा बिस्तर पर पड़ चुकी थी। इतने दिन की थकान भागदौड़ उसे धराशायी करने के लिए पर्याप्त थी। वैसे भी पहले से ही उसकी तबीयत ढीली चल रही थी पर अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उसका बदन इतना कमजोर हो गया था कि वो थोड़ा सा चलने में ही लड़खड़ा जाती थी। नवीन को लगा कि पत्नी नाटक करके ये जताना चाहती है कि उसकी अनुपस्थिति में वो कितनी अधिक परेशान हो गई है, इसलिए वो उसकी उपेक्षा कर गया। इस पर निशा की हालत वास्तव में बहुत दयनीय हो गई थी। उधर एक दिन टिंकू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बदन ऐंठने लगा और गले में बेहद तकलीफ होने लगी। डॉक्टर बुलाया गया जिससे टिंकू को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई। अस्पताल पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही टिंकू गंभीर स्थिति में चला गया। उसे टिटनेस हो गया था क्योंकि लोहे के जंग लगे तार से घाव होने पर भी उसे टिटनेस का इंजेक्शन जो नहीं लग पाया था। वैसे टिंकू ने बड़ी बहन पिंकी को यह 1 सप्ताह बाद बताया था और वो भी कसम खिलाकर इस शर्त पर कि वो मम्मी को नहीं बताएगी। पिंकी उसे लेकर डॉक्टर के पास उसी समय गई भी थी पर डॉक्टर ने कह दिया था कि इंजेक्शन चोट लगने के 24 घंटे के भीतर लगना चाहिए, अब कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो वापस आ गई थी और दोनों ने माँ से इसीलिए भी कोई चर्चा नहीं की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसी चोटें तो लोगों को प्रायः लगती ही रहती हैं। पर अब स्थिति जटिल हो गई थी। निशा नवीन पिंकी सभी घबराए हुए थे पर सबसे

0: ज्यादा दुख निशा को हो रहा था। वो आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अब किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी थे। अब वे एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। अब वे परस्पर काफी करीब आ गए थे। नवीन ने निशा की हालत डॉक्टर को बताई तो परीक्षण के बाद उसे भी एनीमिक पाया गया। उसका इलाज शुरू हो गया। लेकिन निशा के मन में विचारों का एक द्वंद्व पल रहा था। वो वैचारिक झंझावात में फंसी हुई थी। उसे लग रहा था कि निश्चित रूप से उससे अक्षम्य अपराध हुआ था। वो केवल अपनी नौकरी तक ही सिमट कर क्यों रह गई और क्यों नहीं उसने अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने, उन्हें अनुशासित करने पर ध्यान दिया। उधर दूसरी तरफ नवीन भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, क्योंकि वो भी ये समझ चुका था कि बच्चों की परवरिश में उससे भी लापरवाही हुई है। आज दोनों अपनी अपनी गलती का एहसास कर रहे थे और मन ही मन ये संकल्प ले चुके थे कि बच्चों की अच्छी परवरिश करने पर ध्यान देंगे और नौकरी और पारिवारिक दायित्वों में संतुलन बना के रखेंगे। अब नवीन और निशा दोनों को अपने अंतर्मन में प्रकाश बिखरता हुआ जान पड़ रहा था और ये प्रकाश था चेतना का।
1: बहनों, अभी आपने नीलम शरद की कहानी सुनी। शीर्षक था चेतना का प्रकाश। बहनों, हम कई जगह पढ़ते सुनते रहते हैं कि आज की बचत कल की सुरक्षा। लेकिन बहनों, अगर हम इस पर गौर करें तो यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यही चीज हमने अभी जल संरक्षण में भी देखी कि अगर हम आज पानी की बूंदों को बचाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। तो यही बात बहनों हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बचत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बचतें भविष्य में हमारी बड़ी सुरक्षा का आधार बनती हैं। बहनों, अब की जीवन शैली तो हम आप देख ही रहे हैं, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और खर्चे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ वर्षों पहले तक जिन वस्तुओं को विलासिता की श्रेणी में हम रखते थे, अब वही हमारी ज़रूरतों में शामिल हो गई हैं। लेकिन बहनों, हमें खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी आज की बचत और कल की सुरक्षा के महत्व को अच्छे से समझाना है। भगवान न करे परिवार में कभी कोई सदस्य बीमार हो जाए तो अस्पताल, दवा, सभी कुछ के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। और यह सब हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जबकि हमने बचत की होगी। हम अपनी आय का एक छोटा हिस्सा भी अगर नियमित रूप से बचाते हैं तो वह भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में हमारा सहारा बन सकता है। नियमित बचत की आदत हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। और बाजार तो बहनों इस समय अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, लेकिन हमें अनावश्यक खर्चों पर ज़रूर विचार करना है। और यही बात हमें अपने बच्चों को भी बताना है, इस नई पीढ़ी को भी बताना है कि जहाँ पर बच्चों के मुंह से कुछ निकला नहीं और उनका वह सामान हाजिर हो जाता है, तो इस वाली ललक पर हमें थोड़ी सी रोक लगानी है, तभी हम एक आरामदायक भविष्य बना पाएंगे और अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो चलिए फिर से सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

और आज बहनों बस इतना ही समय हो चला है। इस मौसम में आप अपना भी ख्याल रखें, अपने अपनों को सुरक्षित रखें। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को

0: अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए देवी गीत और चाट कौवा और कतवाती।

डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सुनीति महेश्वरी के गाए भजन और गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: सुनीति महेश्वरी के गायस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत तीसरी कसम तेरी कसम फिल्म से अमित कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

सरमा आका की आवाज़ में सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत। हसन कमाल के लिखे गीत की धुन बनाई है रवि ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा, पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर बहस का मौका दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर चर्चा हो रही है। वहीं कल यानी दूसरे दिन समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर बहस और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा,
2: मध्यप्रदेश के अंदर आज 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। देश के युवाओं को लोकतंत्र, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है। जिस प्रकार से आपने शुरुआत की, ये उसकी अच्छी झलक।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुई। यात्रा में हजारों नागरिकों, युवाओं, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में नावों की विशेष फॉर्मेशन से तालाब के बीच विशाल फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत दमोह के तहसील ग्राउंड से निकली तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मैहर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और आगरमालवा में आयोजित तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लेकर लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के 9 विशिष्ट सेवा पदक

और 33 सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 3 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी दिए जाएंगे, जिसमें स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को पदक मिलेगा। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा समेत कई शहरों के 500 से ज़्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, जमीन और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए भोपाल में देर रात से आज तड़के तक जांच अभियान चलाया, जिसके तहत डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से करीब 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई गई है। टीम ने पनीर के नमूने जाँच के लिए लैब में भेज दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दूरसंचार और प्रसारण में शुल्क निर्धारण तथा बिलिंग व्यवस्था विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। धार जिले में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम उटावत पीपलखेड़ा के पास बच्चों से भरी स्कूल बस और यात्री बस की भिड़ंत में 16 लोग घायल हो गए। और सतना जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 माह का सघन जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्ण

0: प्रण ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
1: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
2: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
3: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
4: भारत सरकार चाहते थे मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
5: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
6: इन लोगों की लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर

0: तहकीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तक तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
6: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य

0: 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय अमरीकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है बेटा फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाजें दी है अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवानी, समीर का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए बेटा फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां धामणी मानोरा जिला वाशिम से तुलसी राम डेरे मायावती डेरे संदेश डेरे आदेश डेरे किरण डेरे प्रज्वल डेरे और अनुतजी डेरे नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन आप सब ने सुनना चाहा है बेताब फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने आनंद बख्शी का गीत है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

चंबल की कसम, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, साहिर का गीत और खयाम का संगीत। इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा ने, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर का गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव।

जब जब फूल खिले, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से।

अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, आगर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणकर, सरोच्चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शेब खान, साइमा, मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा, जब जब फूल खिले फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य अतिथि में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुईं। इस मौके पर एक फ्लोटिंग तिरंगा भी नावों के माध्यम से बनाया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है और सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:30 और रात 9:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:00 और 6:45 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विश्व अंगदान दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम। 7:30 सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरदयाल शर्मा की कृषि वार्ता। विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। संसद समीक्षा रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी और रात 8:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे अली अहमद हुसैन और पार्टी का शहनाई वादन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन पलक के गाए गीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे सुनीति महेश्वरी के गाए गीत और भजन।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत टूटे खिलौने फिल्म से, आवाज यशदास की है, गीत कैफे आजमी का और संगीत बप्पी लहरी का।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म खिलाड़ी से। अनवार सागर के लिखे गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत अनु मलिक का।

अगर तुम ना होती। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बाबरा का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सौतन फिल्म से आवाज आशा भोसले की, श्रावण कुमार का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें 350 से ज़्यादा नावें तिरंगे के साथ शामिल हुई और प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं अनमोल द्विवेदी
1: और मैं हूं आद्यान नायक। और आज हम आपको उन सपनों की गलियों में लेकर चलेंगे जहां बचपन आज भी मुस्कुरा रहा है, जहां उम्मीदें अब भी आसमान को छूने की जिद करती हैं, और शायद जहां आपका कोई अधूरा सपना आज भी आपका इंतजार कर रहा है, और जहां आज भी नैन सपनों से भरे हैं।

0: तो दोस्तों, जरा नैनों को कीजिए बंद और याद कीजिए अपना बचपन, वो दिन जब चादर ओढ़कर हम सुपर हीरो बन जाते थे, जब स्कूल की कॉपी के आखिरी पन्ने पर रॉकेट बनाकर चांद पर पहुंच जाते थे, और जब बारिश की पहली बूंद गिरती थी तो कागज की नाव हमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जहाज लगती थी। उस उम्र में सपनों की कोई सीमा नहीं थी और शायद डर नाम का कोई शब्द भी नहीं था।
1: और सबसे प्यारी बात क्या थी जानते हो अनमोल? कोई ये नहीं पूछता था कि इतना बड़ा सपना पूरा कैसे होगा। सब कहते थे वाह बहुत बढ़िया, और हम बिना किसी झिझक के अगले ही दिन अपना सपना बदल भी लेते थे।
0: और सोमवार को डॉक्टर से शुरू करके हम रविवार आते आते सीधे अंतरिक्ष यात्री बन जाते थे। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते सपने नहीं बदलते, बस हमारी हिम्मत छोड़।

0: छोटी होने लगती है। अब हम ये नहीं सोचते मुझे क्या बनना है, हम सोचते हैं मैं बन भी पाऊंगा। और तभी हमारे दिमाग में एक पूरी मीटिंग शुरू हो जाती है, ईएमआई विभाग, जिम्मेदारी मंत्रालय और सबसे ताकतवर लोग क्या कहेंगे, आयोग।
1: और ये आयोग

लेकिन दोस्तों, सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी दुकान में नहीं बिकते, ना किसी बैंक में जमा होते हैं, ना किसी मोबाइल ऐप से डाउनलोड हो सकते हैं। इनकी कीमत सिर्फ दो चीजें हैं, मेहनत और खुद पर भरोसा। तो चलिए साथियों, एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अभी इसी पल अगर आपको कोई डर ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई असफलता का भय ना हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? सोचिए बस 5 सेकंड के लिए, और जो भी आपके मन में आया वो सपना गलत नहीं है।

0: अनमोल, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे शहर का लड़का, ना कोई बड़ी पहचान, ना बड़े संसाधन, लेकिन एक जिद थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। और लोग हंसते रहे, कहते रहे, अरे ये सब तो फिल्मों में होता है। लेकिन उसने सुनना ही बंद कर दिया और मेहनत शुरू कर दी। आज वही इंसान हजारों लोगों की प्रेरणा है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो गिरा, फिर उठा और हर बार पहले से थोड़ा मजबूत होकर उठा।
1: लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई, लेकिन सच तो ये है, सपनों के लिए कभी देर नहीं होती। देर सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है।
0: किसी का सपना आईएएस बनना होता है, किसी का अपना खुद का स्टार्टअप, कोई कलाकार बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी, और किसी का सपना सिर्फ इतना सा होता है कि एक दिन माँ पापा मुस्कुराकर कहें, बेटा हमें तुम पर गर्व है।
1: बिल्कुल, और साथ ही यकीन मानिए, दिल जब सपने देखता है ना, तो जमीन की नहीं आसमान की फिक्र होती है उसे। तभी मन कह उठता है कि उड़ते हुए बादल का टुकड़ा मैं कैसे तोड़ूं।

0: दोस्तों, तभी सपना अपने बस में होता है जब हम दूसरों की राय, असफलता का डर और मैं नहीं कर सकता जैसे विचार छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी मिलेगा, बस पहला कदम उठाने की देर है। पहला कदम उठाइए और बाकी रास्ता अपने आप चलते चलते मिल जाता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, वो पहले गिरता है, फिर उठता है और फिर गिरता है और एक दिन दौड़ने लगता है। अगर वो पहली बार ही गिरकर बैठ जाता तो शायद आज भी चलना नहीं सीख पाता।
0: दोस्तों, अगर आज के कार्यक्रम के बाद आपने सिर्फ एक काम किया, अपने किसी पुराने सपने की धूल झाड़ दी, उसकी तरफ एक पहला कदम बढ़ा दिया, तो समझिए हमारी आज की मुलाकात सफल हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आप

0: तो दोस्तों, सपने देखिए, क्योंकि सपने ही भविष्य की पहली सीढ़ी होते हैं।
1: और उन्हें सिर्फ आंखों में मत रखिए, उन्हें अपने कदमों तक लाइए।
0: इसी उम्मीद, इसी विश्वास और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीजिए अनुमति, आप सुन रहे थे अनमोल द्विवेदी
1: और आद्या नायक को।
0: मुस्कुराते रहिए,
1: सीखते रहिए
0: और सपने देखते रहिए।
1: और सबसे जरूरी बात, हर दिन अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाते रहिए।
0: तो साथियों, फिर मिलेंगे युवाणी के एक नए विषय,
1: नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत कुछ कुछ होता है फिल्म से, उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत की आवाज़ में, शायर समीर, संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने बेताब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में सुना। लीजिए अब सुनिए लगान फिल्म का ये गीत अलका याग्निक सुखविंदर उदित नारायण के स्वर में।

अभी आपने शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत खेल खेल में फिल्म से सुना। यहीं संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 8 बजे संसद समीक्षा और 9:15 पर स्पॉटलाइट आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और रात 8:15 पर सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा शाम 6 बजे से। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे देवी सिंह। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा नंद कुमार जैन को और रात 9:30 पर धारावाहिक हंसना मना है का भाग 12 आज प्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत होगा और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। तो श्रोताओं, ये होंगे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और अब सुने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण, शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:15 पर गांधी चर्चा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, शाम 5:02 से युववाणी, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे। सुबह 7:20 पर होगा गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक रसधार के अंतर्गत सुबह 9 बजे सुने जा सकते हैं चंद्रकांता पाठक के गाए लोकगीत वंदे मातरम। गौरव गान की 150 आप सुनिएगा सुबह 10:05 से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा रोज की तरह शाम 6 बजे। शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा रात 10 बजे और मन भावन होगा रात 10:30 से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजाति कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर बहस का मौका दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें 350 से ज़्यादा नावें तिरंगे के साथ शामिल हुई और

0: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपनी यात्रा के 71 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। आज जीएमसी भोपाल में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान

0: मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
1: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
0: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
5: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी

0: क्या करोगे वीर जी?
1: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी।

0: के एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
1: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: करेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
3: भागो, भागो रे, भागो, आती है।

अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगा

0: लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे। फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
4: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूरवीर।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
7: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्मों के नाम हैं हम हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं हम हिंदुस्तानी जिसे गाया है मुकेश ने। दूसरी फिल्म का नाम है कर्म, ए वतन तेरे लिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज। तीसरी फिल्म है वीरजारा जिसके बोल हैं ऐसा देश है मेरा जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। चौथी फिल्म है बॉर्डर जिसके बोल हैं कि घर कब आओगे जिसे गाया है सोनू।

निगम और रूप कुमार राठौर ने। पांचवी फिल्म है रोजा। गीत के बोल हैं ये हंसी वादियां, जिसे गाया है एसपी बाल सुब्रमण्यम और चित्रा ने। इन गीतों को सुनने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342, यानि 9425149342। आपकी संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकमाटी की खुशबू बिखेरता कार्यक्रम लोक संगीत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने नंद कुमार जैन की गाई सुगम संगीत रचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब होंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज

0: और gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यस्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन, मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं सहित विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भोपाल, ओंकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर और बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज़्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी भोपाल तिरंगामय होती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में गुरुवार को शहर के ऐतिहासिक बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल इस दौरान राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। युवा खिलाड़ियों ने काइकिंग, केनोइंग और केनो सलालम शो के जरिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान तालाब के बीच देश में पहली बार फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं नौका सवार होकर देश सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
0: जबकि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। बैतूल, गुना, खंडवा, शहडोल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यस्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनसेवा, सुशासन और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय गडरिया महासभा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में डॉ. यादव ने पाल गडरिया बोर्ड के गठन की घोषणा भी की।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा।
0: भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूरी प्रक्रिया को तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोहराया गया। परेड, मार्च पास्ट और ध्वजारोहण के साथ सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन आज किया गया, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। पहले दिन भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस हुई। वहीं कल समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा

और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। रायसेन जिले में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के साथ प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर अच्छे बीज, खाद और पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व अंगदान दिवस के मौके पर कहा कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए नई आशा और नया जीवन देने का महान संकल्प है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए देश प्रेम और धर्म संस्कृति के संरक्षण के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी कल शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व छात्रों के सहयोग से बने आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरिना का लोकार्पण किया और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विश्व अंगदान दिवस पर लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की भी अपील की। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 18 अगस्त से समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश, जिले और गांव स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जहां जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी जिलों में कलश रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। भोपाल में कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर पनीर के नमूने लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक इसे एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। इंदौर में भी करीब 800 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बाद अब मानसून का स्ट्रांग सिस्टम पूर्वी हिस्से में एक्टिव होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा 15 अगस्त को रविन्द्र भवन में आयोजित आज़ादी के महापर्व में प्रख्यात गायिका कविता कृष्णमूर्ति देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन HIV जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहडोल में स्थानीय उद्यमियों और समूहों के लिए लघु उद्योग भारती के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर में स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में PM पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजाति बाहुल्य गांवों में आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्योपुर में 14 अगस्त को विकासखंड कराहल के ग्राम बरगवां में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आगरमालवा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में पुरानी कृषि उपज मंडी से 51,000 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:22 होने को है। श्रोताओं, अभी हम बात करेंगे विकसित भारत विषय पर थोड़े से अंतराल के बाद।
6: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
7: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
7: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
5: आकाशवाणी जबलपुर के स्टूडियो में आपके साथ अभी मौजूद है शालना बेंजामिन और हमने जैसे कहा था कि अंतराल के पहले हम बात करेंगे विकसित भारत पर। श्रोताओं, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए विश्व में जाना जाता है, लेकिन जब हम इसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सुधारें। हमारे दृष्टिकोण एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त हो। भारत एक विकासशील देश है जो तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। स्वतंत्रता के बाद से

हमने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी दृष्टिकोण एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जहां गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव का नामो निशान ना हो। भारतीय सरकार का वो दृष्टिकोण है जिसके तहत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। इस रोड मैप का लक्ष्य मजबूती, आर्थिक विकास, यानी 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से सुशासन स्थापित करना है, जिसके मुख्य स्तंभ होंगे आर्थिक विकास, युवा नेतृत्व, समाज कल्याण और नवाचार, और साथ में प्रौद्योगिकी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया बहनों को आरती जीजी की राम राम पहुंचे। भैया जीजी देखो, कृषि को कार्य ऐसो है जी में कोनो एक के करे से नहीं होत, बल्कि महिला पुरुष दो ही खो मिलके करने होते हैं, तभी कृषि को कार्य पूरो होते है। तभी तो कहो गो है कि कृषि में महिलाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 73 से 80% महिलाएं कृषि और उसे जुड़े कार्यों में लगी भई हैं। हम महिलाओं के प्रमुख कार्य खेतन में बीज की बुआई, धान की रुवाई, निराई गुड़ाई, इसके अलावा फसलों की कटाई, अनाज की सफाई, भंडारण को प्रबंधन जैसे विशेष कार्य जो हैं हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था होवे और चाहे दूध निकालवे को काम होवे या मुर्गी पालन या मछली पालन, ये सभी हमारी महिलाओं के द्वारा ही करे जाते हैं। पर इनको करवे के समय उन्हें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जैसे मालिकाना हक की बात कह लेवे तो महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम 8% ही होते हैं। दूसरे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कार्यों में 25 से 35% लो कम मजदूरी मिलत है। भूमि को कानूनी हक न होवे से कई बेर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य आधिकारिक ऋण योजनाओं को सीधो लाभ भी नहीं मिल पाऊत। हम महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावे के लाजे कृषि सखी जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसे ग्रामीण महिलाओं को कृषि विशेषज्ञ के रूप में तैयार करो जा रहा है। भैया जी, ई टाइम में मानसून को मौसम चल रहा है, इस समय फल फूलों के पेड़ पौधा के संगे साग भाजी की रुपाई कर देवें तो ना केवल उसे हमारी प्रकृति और आसपास को वातावरण हरो भरो बनो रहते, बल्कि फल फूल सब्जी की फसल लेके हम आर्थिक लाभ सोई ले सकते हैं। मानसून मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य कौन से करे जाते हैं जानत है विशेषज्ञ डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी से। उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, वर्षा काल चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस बरसात के मौसम में हम अनाज वाली धान्य फसलें ये सब तो लगाते हैं, लेकिन जो किसान भाई उद्यान की फसलों से जुड़े हुए हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, फल फूल उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि RNTU भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बात हम करेंगे वर्षा काल में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार्य। चौरसिया जी, उद्यान की फसलों से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों, जैसे हम जानते हैं बरसात का मौसम है, कभी बारिश ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, पर इस समय जो फसलें लगी हैं यदि पानी अधिक बरसता है तो उसमें जल निकासी की व्यवस्था करना है पहला तो, ताकि उसकी जड़ें ना गले। और जो किसान भाई फल वृक्ष तैयार करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है। इस समय बडिंग ग्राफ्टिंग करके नए पौधों को तैयार कर सकते हैं, ताकि उनको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर रहेंगे और कम लागत में पौधे भी तैयार हो जाएंगे उनके। तो फल पौधों को तैयार करने का ये सबसे अच्छा सीजन यही है, क्योंकि इस समय वातावरण में आद्रता होती है तो उस समय उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। यदि यही हम किसी दूसरे मौसम में करेंगे तो सक्सेस रेट कम मिलेगा। बरसात के मौसम में हम जो भी बडिंग ग्राफ्टिंग का काम करते हैं, एयर लेयरिंग का, गूटी बांधने का काम करते हैं,

0: तो फल वृक्षों में सफलता अच्छी मिलती है
1: जी। बूटी बांधने का काम जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से ग्राफ्टिंग हो सकती है, हम थोड़ा सा फलों पर ही चलते हैं। फलों के जो बाग हैं इस समय, फलों के बागों में देखा जाए तो पानी की देने की समस्या तो होती नहीं है, यहाँ कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तनों पर भी होता है, फल हैं तो उन पर भी होता है। खासकर अमरूद की अगर बात करें तो अमरूद में तो बारिश में बहुत ज़्यादा फल खराब होते हैं, क्या किया जाना चाहिए?
0: इसमें हम कहते हैं कि साफ सफाई खेत की रखना चाहिए, जैसे बारिश होने के पहले खेत में अच्छे से रोटावेटर कल्टीवेटर चला के खेत को साफ रखें
1: जी।
0: फिर ग्रीस बैंड होते हैं प्लास्टिक के, उनमें ग्रीस लगा के तने के चारों तरफ चिपकाएं, तो जो कीड़े जमीन से उठ के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, तने को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उससे बचाव हो जाता है। और अमरूद में एक समस्या आती है फल मक्खी की, वो क्या होता है जब फूल आता है फूल में अंडे दे देती है, और फूल से जब फल बनता है तो उसके अंदर ही वो इल्ली बड़ी होकर फल को खराब कर देती है। कोई भी दवा से हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन बाजार में कुछ फेरोमोन ट्रैप आ गए हैं, यदि फ्लावरिंग अवस्था से लेकर फ्रूटिंग अवस्था के बीच में हम वो फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो उसको नुकसान पहुंचाने वाली मक्खी फंस जाएगी, और बिना रसायनों के प्रयोग से हम बरसात के मौसम में भी अच्छे अमरूद के फल ले सकते हैं।
1: अब जैसे कि इस समय अमरूद में कीड़े लग ही चुके हैं, उन्हें तो बचाया जा नहीं सकता, लेकिन आगे जो फल आने वाले हैं उनको बचाने के लिए अभी से कोई सावधानी बरती जा सकती है क्या?
0: हाँ, जैसे अभी बरसात की फसल तो कम किसान भाई लेते हैं, ज़्यादातर अमरूद की फसल किसान भाई लेते हैं ठंड के मौसम में, तो उस समय सितंबर के महीने में जो नत्रजन उर्वरक है उसकी दूसरी खाद की मात्रा दें
1: जी।
0: और साथ में उसमें फेरोमोन ट्रैप लगा दें, तो उसमें जब फ्लावरिंग आएगी, अभी बरसात अमरूद में क्या होता है तीन बहारें आती हैं, अमरूद की फसल में फूल बरसात में आते हैं तो फल बनता ठंड में, तो इस समय जो फ्लावरिंग है उस समय हम बचा लेंगे, तो आगे आने वाले फल में हमारी जो इल्ली लगने वाली है उससे हम बच जाएंगे।
1: और फलों में नए पौधे भी बाग के लगाए गए हैं, तो जो नए पौधे अभी लगे हैं उनके लिए क्या खाद उर्वरक का प्रबंधन रखना चाहिए?
0: जैसे हम जानते हैं कि मिट्टी की जांच करा लें खेत की, चाहे वो फल सब्जी लगा रहे हैं धान फसलें लगा रहे हैं, मिट्टी की जांच कराने के बाद पता चल जाएगा जिस पोषक तत्व की कमी है उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और हम बिना जांच के लिए डालेंगे तो पता चला जो तत्व हमारी मिट्टी में ज्यादा भी है फिर भी हम उसकी मात्रा ज्यादा डाले जा रहे हैं, किसानों भाइयों की लागत ही बढ़ती है। और ज्यादा नत्रजनी उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें क्या पौधों में रस बनता है तो उसको चूसने के लिए रस चूसक कीट आते हैं, तो उन संतुलित प्रबंधन करें यदि उर्वरकों का तो हमारा पौधा मजबूत बना रहेगा, उसमें रस चूसक कीड़ों का आक्रमण भी नहीं होगा और किसान भाई कम लागत में अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बोर्डो पेस्ट लगाने का तरीका क्या है फिर?
0: हाँ, बोर्डो पेस्ट कहते हैं बारिश के मौसम में जब खत्म हो जाता है सितंबर के महीने में
1: जी।
0: तो तने में चूने में नीला थोथा मिला के तैयार किया जाता है और तने में लगा देते हैं, जो फफूंद जनित बीमारियां लगने वाली होती हैं पौधे में उससे बहुत नियंत्रण हो जाता है।
1: हम अब बागवानी में चलते हैं सब्जियों की तरफ
0: जी।
1: सब्जी जो लगाते हैं किसान भाई, इस समय बहुत ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है उनकी पत्तियों पर
0: जी,
1: तो क्या उपाय है उसका?
0: किसान भाई को बरसात के मौसम में जो भी फसल लगाना है वो उठी हुई बेड पे लगाना है ताकि पानी की निकासी हो जाए जब ज्यादा हो जाए। और हम इस समय देखते हैं कद्दूबर की सब्जियां ज्यादा लगाते हैं किसान भाई
1: जी,
0: तो कद्दूबर की सब्जियों की इस समय उनको बांधने का भी काम करना चाहिए, बधान जो होती है गर्मी के मौसम में हम नहीं बांधते क्योंकि लू चलती है, लेकिन बरसात के मौसम में जो फसल लगाते हैं उसमें बांस बल्ली से बांध के तार से रस्सी से सहारा दिया जाता है, जमीन के जितना टच में नहीं आएगा फल उसमें उतने कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा, हवा में लटके लटके हवा भी अच्छी मिलेगी उसको, वो बढ़वार अच्छी होगी।
1: लेकिन फल सड़न तो यहाँ भी होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी।
0: हाँ, तो वो कुछ फफूंद जनित कारणों से होता है, फफूंद के कारण, और कुछ कीड़े खा लेते हैं इसके कारण भी खराब हो जाते हैं।
1: तो उसका उपचार क्या होगा?
0: यदि जो किसान भाई जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, घनजीवामृत है और जो अपने दशपर्णी अर्क है जो जैविक का प्रयोग करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और रासायनिक का जो प्रयोग करते हैं तो फफूंदनाशक कीटनाशक का छिड़काव समय समय पर कर सकते हैं
1: जी। जी सर, नींबू वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो इस समय नींबू वर्गीय फसलों में स्ट्रेंग कैंकर रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है
0: जी,
1: और नींबू उत्पादक किसान इसको लेकर परेशान भी होते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए?
0: ये सिट्रस कैंकर से एक जीवाणुजनित बीमारी है और ये पौधों में तब होती है जब पौधे में कापर की कमी होती है, तांबे की कमी होती है, तो हमें कापर युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए एक तो मिट्टी में, तो पौधों में कापर की यदि कमी नहीं होगी तो वो जीवाणु से लड़ने की क्षमता उसमें वैसे बढ़ जाएगी, और यदि मान लीजिए लग गया है सिट्रस कैंकर तो फिर स्टेप्टोमाइसिन नाम की एक दवा आती है जीवाणुनाशी, उसका प्रयोग करना चाहिए छिड़काव करने में, कॉप्रोक्सीक्लोराइड के साथ स्टेप्टोमाइसिन मिला के छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है।
1: इसका डोज क्या रहेगा?
0: उसका एक कैप्सूल आता है स्टेप्टोमाइसिन का।

0: जी
1: 6 ml का रहता है, तो वो अपने 15 लीटर पानी के लिए काम आता है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम कहते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला के, दोनों को मिला के छिड़काव कर देंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदजनित बीमारी को रोकेगा और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु जनित बीमारी को रोकेगा, तो दोनों तरह से नियंत्रण हो जाता है।
0: अच्छा, नींबू की फसल में एक समस्या और हो जाती है, अनार है, नींबू है, इनमें फल बनते हैं, बढ़ते हैं, या तो वे झड़ जाएंगे बहुत छोटी अवस्था में। दूसरी समस्या, अगर फल बढ़ गए तो वे फट जाते हैं। दोनों को कैसे संभालें?
1: जो आपने पहली समस्या बताई कि फल झड़ जाना, वो क्या होता है कि किसान भाई हम देखते हैं एनपीके का प्रयोग तो ज़्यादा करते हैं पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कम करते हैं।
0: अच्छा।
1: यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो फल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। और जो आपने समस्या बताई फल फटने की, वो क्या होता है कि जैसे पानी का गैप हो जाता है, जब काफ़ी समय तक हमने फसल में पानी नहीं दिया और एकदम से पानी दे दिया तो वो उसका सेल से फट के बाहर आ जाता है, इसलिए भी समस्या आती है। और कई बार फसल में कीड़ों के प्रकोप के कारण भी फटने की समस्या आती है। तो सबसे पहले तो नमी का प्रबंधन अच्छा करें, हम समय समय में पानी देते रहें। जैसे जो किसान भाई ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो पानी उसमें रेगुलर मिलता रहता है, और जो किसान भाई फ्लड सिंचाई करते हैं उनके यहाँ समस्या ज़्यादा आती है।
0: अच्छा, ये कहा जाता है कि बोरान की जो असंतुलन है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो कितनी बात सही है?
1: नहीं, बिल्कुल सही है। जो फलों का जो कटना होता है वो बोरान तत्व की कमी से होता है ज़्यादातर। एक तो अपन ने बात की कि नमी का अपन ने प्रबंध नहीं किया तो हो जाएगा, बहुत दिन से सूखा था फिर एकदम से पानी दे दिया, फसल ने ज़्यादा पानी ले लिया तो फट गया। दूसरा, जो बोरान की कमी होती है उसके कारण ही फल फटते हैं। तो बाजार में बोरेक्स एक मिलता है उत्पाद, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या बोरान वाली घुलनशील खाद आती है उसको भी मिला के छिड़काव कर सकते हैं।
0: अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई जो पत्र लिखते हैं और बात करते हैं कि इस समय अदरक की खेती किसान मध्य प्रदेश में बहुत आयात में करने लगे हैं। अदरक में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पत्तियों में सूखापन आने लगता है, ऊपर से नोक से सूखने लगती हैं पत्तियां, नीचे गलन शुरू हो जाता है
1: जी,
0: कई जगह ऐसी समस्या आ रही है, क्या किया जाए?
1: इसमें अदरक में हम देखते हैं फफूंदजनित रोगों की समस्या ज़्यादा आती है। जब अदरक का नया नया हम रोपाई करते हैं तो ऊपर पुआल से ढक देते हैं उसको, ताकि जब अंकुरण आए तो अंकुरण कुछ समस्या ना आए। और जब अंकुरण आने के बाद वो पुआल हटा लिया जाता है, ऊंची हुई उठी हुई बेड पे लगाएं और अच्छी उन्नत प्रजाति का, आज के समय में कई प्रजातियां आ गई हैं जो कई रोग बीमारियों से प्रतिरोधी हैं, उनका चयन करेंगे तो किसान भाई कई समस्याओं को प्राथमिक रूप से ही हल कर सकते हैं
0: लेकिन अदरक में लीफ ब्लाइट की जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे?
1: ये फफूंदजनित बीमारी है
0: जी,
1: तो कोई भी उचित फफूंदनाशी लेके उसका छिड़काव करेंगे तो समस्या से निदान पा सकते हैं।
0: मिर्च की फसल में भी हम बात कर लेते हैं, मिर्च की फसल में भी सर कुकड़ा रोग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, पर्ण कुंचन जैसे कह सकते हैं
1: जी जी,
0: पूरी मिर्च सिकुड़ जाती है, किसान बहुत परेशान है, शिमला मिर्च की बात हो या आपकी लंबी मिर्च की बात हो, इससे निजात पाने के लिए क्या तरीका है?
1: ये जो कुकड़ा रोग फैलता है वो एक कीट के कारण फैलता है, मिर्च में थ्रिप्स का अटैक होता है
0: जी,
1: थ्रिप्स उसमें रोग फैलाता है। और टमाटर में हम देखते हैं कि सफ़ेद मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी जब आक्रमण करती है तब उसमें वायरस रोग फैलता है, तो कीट का प्रबंधन करना पड़ेगा तो ये रोग भी नहीं लगेगा समय पे। जैसे आज के समय बाजार में नीले पीले कार्ड मिलते हैं चिपचिपे, या तो उनको लेके लगा सकते हैं, या किसान भाई घर में यदि कनस्तर है उस पर पहले प्राइमर पोत दें फिर पीला नीला बार्निश पोत के खेत में लगा लें ग्रीस के साथ में, तो ये जो रस चूसे कीटे आके उस पर चिपक जाएंगे और किसान भाइयों की फसल में ये जो आपने बताया कुड़कुड़ा रोग नहीं लगेगा और दवाइयों पर उनकी निर्भरता भी नहीं रहेगी।
0: ओके, भिंडी में भी चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि भिंडी की फसल ऐसी है 12 महीने उगाई जाती है, भिंडी की फसल में माहू का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, और भिंडी में जब माहू आती है तो वाकई भिंडी को बहुत नुकसान होता है, पूरी फसल में उसका प्रकोप होता है। एक सटीक नियंत्रण अगर भिंडी की माहू की बात की जाए तो
1: हाँ, माहू के लिए भी जो हमने आपको बताया था पीला कार्ड यदि अपन लगाते हैं तो पीले कार्ड में माहू की कीट छिपक जाते हैं तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ में रोगोर नाम का एक केमिकल आता है, डाइमेथोड जो होता है वो सस्ता केमिकल होता है, उसका छिड़काव करें तो माहू का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
0: क्योंकि और ऐसा कोई विषय अभी जो छूट गया हो सब्जी में, फल में, या उद्यानिकी से जुड़ा हुआ जिसे कि समय किसान भाई ध्यान रखें?
1: जैसे किसान भाई आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में सारी सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, तो किसान भाई इस समय धान की फसल ज़्यादा लगाते हैं, हम कुछ किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आधा एकड़ एक एकड़ में वो उद्यानिकी फसलों का भी समावेश करें, तो घर में खाने के लिए भी उनको सब्जी हो, वो कुछ बाजार में बेचेंगे तो बाजार में सब्जियों की उपलब्धता अधिक होगी तो आम उपभोक्ताओं को भी सब्जी सही रेट पर मिल पाएगी।
0: और किसानों को लाभ भी होगा।
1: किसानों को लाभ भी होगा।
0: सर चलते चलते एक और सवाल

0: मेरे मन में है कि किसान, कहते हैं ना कि नगदी फसल लगाने में ज़्यादा विश्वास करता है। किसान को रोज़ खर्च करना है, रोज़ पैसा कमाना है। ऐसी कौन सी फसल है जिसको कि वे लगा करके रोज़ पैसा कमा सकते हैं?
1: हाँ, जैसे आपने अभी बात की थी, भिंडी की फसल है, गिलकी की फसल है, ये कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती हैं। बस इनका समसामयिक प्रबंधन अच्छे से कर लें,
0: जी जी
1: हर दूसरे दिन में भिंडी टूटेगी, हर दूसरे दिन में आपकी गिलकी टूटेगी, इनको तोड़ के बाजार में आप विक्रय करें, अच्छे रेट मिलेंगे, कुछ घर में भी उपयोग कर सकते हैं अपने। गिलकी भिंडी तो ये हो गई खुले खेत की। अब जो किसान संरक्षित खेती करते हैं तो उसमें शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ठंड के मौसम में ब्रोकली लगा सकते हैं, अभी बरसात के मौसम में स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं।
0: अच्छा, फूलों की खेती को लेकर आपकी क्या विचार है? इस पर हमने अभी तक बात नहीं की।
1: हाँ, फूल हमारे तीनों सीजन के अलग अलग होते हैं, वर्षाकालीन अलग होते हैं, बसंतकालीन अलग होते हैं, और ये ग्रीष्म ऋतु के फूल अलग आते हैं। तो सीजन के हिसाब से फूलों का चुनाव कर सकते हैं। साथ में बरसात में यदि हम देखें तो गेंदा है आपका, क्राइसेंथेमम है, गुलदाउदी है, ग्लेडियोलस है, इनका प्रयोग कर सकते हैं लगाने में किसान भाई।
0: धन्यवाद लवेश कुमार चौरसिया जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे किसानों को जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान इन सारी बातचीत को सुनकर उन पर अमल करेंगे और लाभ लेंगे। बहुत बहुत आभार आपका।
1: धन्यवाद।
2: अबे हम सुन रहे हते मानसून के मौसम में उद्यान की फसलों में समसामयिक कार जा जानकारी लेके हमारे भैया हरे जरूर लाभान्वित हुई हैं। जिजी सावन को मौसम चल रहो है तो सुन लेते हैं लीला जोशी के स्वर में जो कजरी।

0: अबे सुनी जो कजरी जीखों गा रही हती लीला जोशी। अब सुन लेते हैं लघु वार्ता डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी से, खरीफ मौसम में समसामयिक कार्य।
1: किसान भाइयों, ये समय है हमारी फसलों को मुख्य रूप से कीड़े और बीमारियों से बचाने का। कुछ फसलें अगर देर से बोई गई हैं तो उनमें कुछ खरपतवार नियंत्रण करने का भी, और यदि कहीं फसलों में कमजोरी दिख रही है या पीलापन दिख रहा है तो उसमें पोषण की व्यवस्था करने का। हमारे प्रदेश की मुख्य फसल अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अभी कहीं कहीं शाखा और फूल निकलने की स्थिति है, और इसमें मुख्य रूप से जो कीट नुकसान कर रहे हैं वो हैं अलग अलग कलर की रंगों की इल्लियाँ। ये इल्लियाँ जो पौधे के नुकसान पहुँचाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं कीट जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें घुस के, जैसे रिंग कटर कहते हैं हमारे किसान भाई, और गर्डर ब्यूटल जिसका नाम है। तो इल्लियों के लिए नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो खेत का निरीक्षण कर लें और ये देख लें कि करीब 1 मीटर की लंबाई कतार की हो उसमें करीब 2-3 इल्लियाँ अगर दिख रही हैं तो फिर हमें नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना आवश्यक है अपनी फसल को बचाने के लिए। तो ये इन इल्लियों में मुख्य रूप से हरे भूरे कलर की और कई रंगों की होती हैं इल्लियाँ। एक सेमी लूपर नाम की भी इल्ली होती है जो कूबड़ निकाल कर चलती है, उसको किसान भाई पहचानते हैं। तो ये सभी इल्लियाँ बहुत नुकसान करती हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए मिश्रित कीटनाशक बहुत प्रभावी हैं। उनमें एक बीटा साइहेलोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड, इनके मिश्रण से एक ये बना है और इसको 350 मिलीलीटर दवा आवश्यक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये कीटनाशक अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरा थायमेथॉक्सम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन, ये करीब 125 मिलीलीटर दवा इसकी उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी एमामेक्टिन बेंजोएट, ये 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव दवाइयों का करना है। इसमें दवा छिड़कते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूरे खेत में छिड़काव हो, इसके साथ साथ मेड़ों पर भी इसका छिड़काव हो, जिससे जो कीट मेड़ों पर रह जाते हैं वो वापस खेत में ना आ सकें, वहाँ भी छिड़काव अवश्य करें। गर्डल बीटल के नियंत्रण के लिए लैम्डा साइहेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर या पूर्व से जो उपयोग करते रहे हैं ट्राइजोफॉस 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी समय रोग भी आते हैं सोयाबीन में भी, अन्य फसलों में भी। तो मुख्य रूप से जो पीला मोजेक रोग है जिसमें पीली पत्तियां पड़ती हैं पौधों की, वो बहुत सामान्य रूप से फैलता है। इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रोग सफ़ेद मक्खी जो बहुत छोटी मच्छर जैसी होती है उससे फैलता है, और ये पत्तियों का रस चूस के दूसरी जगह जाते हैं और पूरे खेत में इसको फैलाते हैं वायरस को, और बहुत तेज़ी से पीलापन आता है। इसमें किसान भाई ध्यान रखें और बहुत तरीके से पूरा निरीक्षण हो, समय पर रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें, मिट्टी में गाड़ें, इधर उधर ना फेंकें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायमेथॉक्सम नाम का कीटनाशक

0: शब्द का उपयोग करें, ये 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो इससे जब ये नियंत्रित हो जाएगा तो पीला मोज़ेक रोग भी नियंत्रित रहेगा। धब्बे वाली कुछ बीमारियां भी सोयाबीन में होती हैं, उसमें फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और टैबुकोनाजोल 10 ग्राम और उसमें सल्फर मिलाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किसान भाई ध्यान रखें, अगर आवश्यक है तो 15-20 दिन की यदि फसल है तो एमाजाथा फायर 75 ग्राम या कुजुलफा पिथाइल का छिड़काव कर सकते हैं।
1: अबे आप सुन रहे हते खरीफ फसलों में समसामयिक जानकारी डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी से। जी, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ई योजना को उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भई हमारी ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ा के 1 लाख रुपए या उसे अधिक करवे को है। ई के साथ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता सोई दी जा रही है। ई योजना के बहुत सारे लाभ हैं। ई योजना से स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को जोड़ा जाते है। महिलाओं को वर्ष भर में 1 लाख रुपए कमावे योग बनाओ जाते है। स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करवे के लाजे आसान व कम ब्याज दरों पे ऋण की सहायता मिलत है। महिलाओं को सिलाई, कृषि, डेयरी, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे कार्यों को प्रशिक्षण सोई दिलाओ जाते है। ई के लाजे पात्रता की कछु शर्तें हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच भव चाहिए। महिला को कोनऊ स्वयं सहायता समूह से जुड़ो भव चाहिए। लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलते हैं, जिसे वे अपने परिवार और समाज की आर्थिक प्रगति में योगदान देती हैं। भैया जी, अबे आप सुन रहे हते किसान वाणी कार्यक्रम। अब समय हो रहा है सो आरती बहन को देव आज्ञा। राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
1: किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:15। श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ, आपका दोस्त चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है आनंद मठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, हेमंत कुमार।

11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंदना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे

सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों

के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधा कृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप

0: गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्यवाही में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani. यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार
3: त्रिपाठी जी। जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग जयपुर में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ख़ास तौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के

0: में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है। जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में हैं और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं, सड़क परियोजना, जल मार्ग परियोजना, एयरपोर्ट के तटीय परियोजनाएं, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। और इस परियोजना के लिए, हर काम के लिए जैसे पूंजी की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन सब परियोजनाओं के लिए ज़रूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कलेक्शन से जो रेवेन्यू आती है उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए। और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो PPP में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए, जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों की भले ही भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको तो दरकिनार करके भी उनकी बेसिक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी करीब करीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती बल्कि कई और चीजें होती। एक तो सरकार का खर्चा
0: जी,
1: दूसरा उनके जो संस्थान हैं, उनकी संसद है, उनके विधानसभाएं हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनकी जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनकी रेलवे वगैरह चल रही, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह। तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सकें, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता
0: जी।
1: है। अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे या कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे
0: जी।
1: हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेस है वो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट ले, अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है, सड़क बनाता है या सड़क है, बस चलाता है समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा लेकिन उससे कि मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता है। तो अब इस चीज को समझा गया है
0: जी। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खुली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के लिए सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
1: जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप, एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी या ये पोर्ट ऐसे डेवलप होगा या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, ये पैरामीटर है। इसके साथ ही ये भी पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो हैं उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहाँ ले जाएं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना हो। ये भी

0: इसमें ये पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कारपोरेट समझौता करते हैं।
1: जी, और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश हैं वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
0: हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से तो सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि ना सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे, या ना सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
1: जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
0: देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी 100 अरब डॉलर के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ 100 अरब डॉलर की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में या एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली, या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों
1: जी
0: को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीज़ें की गई हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ही कर रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के ही कोऑपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा ना करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दें, आप लोकल करेंसी में दें, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लैक्चुएशन से बची रहे
1: जी
0: जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज़्यादा जोर दें, जो पर्यावरण को दूषित न करे,
1: जी
0: जो प्रोजेक्ट उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू
1: जी जी
0: डेवलपमेंट बैंक
1: जी
0: की।
1: इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक्स हैं, केंद्रीय बैंक हैं, किसी भी देश में जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश हैं, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
0: देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से ला रहा है जा रहा है, तो वो इन्वेस्टर किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितने दिन में वो जिस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं,
1: जी
0: सड़कें बनती हैं तो उसमें यह होता है कि टोल टैक्स लिया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है,
1: जी
0: प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले
1: जी
0: सकता है। तो यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीज़ें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है,
1: जी
0: इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाएं
1: जी
0: जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना
1: जी
0: पड़े।
1: जब हम त्रिपाठी जी विकास की बात करते हैं तो एक पूरे, जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
0: देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके रिफ अपलाइन और डाउन
1: जी
0: स्ट्रीम दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही आप डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी

0: में डिफेंस में कई चीज़ें बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए चाहिए, तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, कई ऐसी चीज़ें हैं
1: जी
0: खनन
1: खास
0: के लिए हमें
1: जी जी
0: चाहिए।
1: खास तौर से अगर हम बात करें जी ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी हम
0: जी
1: विकास का काम करें, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती हैं आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
0: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बाढ़ आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की,
1: जी
0: तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे। और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित है।
1: जी पंडित जी, अगर हम भारत की खास तौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहां पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
0: इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफ़ी सफल रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वो करने के मामले में, जहाँ रोड है वहाँ ठीक है, जहाँ रेल है वहाँ तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉड वाटरवेज, अगर आप
1: जी
0: उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है, कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
1: जी
0: गंगा बड़ी हो जाती है तो
1: जलमार्ग
0: वहाँ
1: के विकास की बात
0: जलमार्ग का
1: करें।
0: विकास किया जाए।
1: जी
0: हम म्यांमार के लिए जलमार्ग का विकास कर रहे हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधन योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है।
1: जी
0: लेकिन कई इसमें क्षेत्र हैं जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं
1: जी
0: जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
1: जैसे कि हम अगर जिक्र करें जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है, माल भाड़े, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
0: हाँ देखिए अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे
1: जी
0: हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है, बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वाहक जा रहा है तो जगह जगह पे उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से पिलफरेज की कोई वो ना हो,
1: जी
0: कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
1: त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
3: मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुहाग फिल्म से एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

अभी आपने अग्नि साक्षी फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की आवाज में सुना। लीजिए अब सुनिए अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। देखिए, बिजनेस अच्छा हुआ है, अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हैं? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर $570 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह $520 करोड़ था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग $900 करोड़ और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ $220 करोड़ हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
7: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड

0: ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है धारावाहिक हंसना मना है। इस धारावाहिक का आज हम प्रसारित करेंगे भाग 12। आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमल कांत इंडे की, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम।

0: धारावाहिक हंसना मना है के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। आइए आरंभ करें आज की नई कड़ी कुलकर्णी बंधुओं के साथ, यानी दत्तात्रेय कुलकर्णी और हेमंत कुलकर्णी की इस प्रस्तुति के साथ।
1: अरे भाई नमस्कार।
2: नमस्कार भैया, नमस्कार।
1: हाँ भाई, ऐसा है
2: हाँ
1: कि आज अचानक तुम्हारी याद आ गई हमको।
2: हाँ
1: हाँ,
2: अच्छा हुआ।
1: यानी बात क्या है, अब तुमने ये पूछा ही नहीं हमसे कि याद क्यों आ गई।
2: हाँ वो तो भाई देखो, जब हम पूछने वाले थे
1: हाँ,
2: लेकिन हमको ये याद नहीं रहा कि ये पूछना है तुमसे।
1: अच्छा अच्छा, हाँ
2: हाँ
1: हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक है, याद नहीं रहा इसलिए तुमने पूछा नहीं।
2: ये मतलब है ना, और कोई बात नहीं।
1: यानी ये भी बात तुम्हारी बड़े समझने की है
2: हाँ।
1: यानी एक आदमी अब तुम्हारे साथ ऐसा दिया जाए जो तुमको समय समय पर याद दिलाता रहे।
2: हाँ, बताता रहे कि भाई आपको ये करना है ये करना है।
1: इसका मतलब है कि तुम्हारी उम्र हो गई।
2: उम्र नहीं हो गई
1: हाँ,
2: मतलब याद नहीं रह पाता ना इसलिए।
1: अरे याद क्यों नहीं रहता
2: हाँ?
1: क्योंकि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई।
2: हाँ, स्मरण शक्ति
1: क्यों कमजोर हो गई?

0: है।
1: अरे तुमने अपने आप को घर तक सीमित कर लिया।
0: अरे तो नहीं तो कहाँ चले जाते,
1: घर ही में बैठे हो, चार लोगों में उठना बैठना बातचीत करना वो कुछ।
0: चार लोगों में बेकार के एक दूसरे की बुराई बुराई करते हैं, कोई काम धंधा रहता नहीं है, उनने कहा वो ऐसा है वो वैसा है और दिमाग खराब हो जाता है अपना अपना।
1: अब बताओ ये अगर तुम्हारे विचार है, और मेरा ये कहना है कि चार लोगों में आओगे जाओगे तो हंसी मजाक भी चलती रहेगी।
0: हाँ,
1: तुम्हारा मन भी बहलेगा।
0: नहीं बहलेगा तो अब वो एक बार गए रहे चार लोगों में बैठने के लिए, तो यहाँ से पहले तो मजाक चलती रही उनकी।
1: अच्छा,
0: खूब बढ़िया मजाक होती रही।
1: हाँ।
0: और पता नहीं क्या हो गया, मजाक ही मजाक में लड़ाई होने लगी भाई।
1: हाँ, अरे
0: बाद बाद में
1: उन दोनों की आपस में अच्छा,
0: मतलब कोई मतलब नहीं, झगड़ा हो गया बेमतलब का।
1: कैसे
0: कैसे मतलब, अब जैसे तुमने कोई बात बोल दी।
1: हाँ।
0: तो हमने उसके बात बोल दी।
1: वैसे मेरे सुनने में तो ये आया था।
0: हाँ।
1: ये जो झगड़ा हो गया ना।
0: हाँ।
1: वो शायद ठाकुर साहब को वहां पहुंचना था।
0: हाँ।
1: ठाकुर साहब गए नहीं, उनने अपने लड़के को भेजा।
0: अरे भाई तो उसमें कौन सी गलती हो गई?
1: नहीं घटना मुझे पूरी नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है क्या?
0: मालूम है।
1: क्या है
0: वो? ऐसा हुआ था, गांव में एक आदमी मर गया।
1: अच्छा।
0: अब उसकी और ठाकुर साहब की बहुत बुराई थी।
1: अच्छा।
0: लड़ाई खानदानी चली आ रही थी।
1: अच्छा, मतलब जो मर गया वो और ठाकुर साहब।
0: ठाकुर साहब।
1: अच्छा,
0: इनकी खानदानी दुश्मनी चल रही थी।
1: पर देखो पड़ोस पड़ोस के गांव है।
0: अब भाई गांव की तो बात पड़ जाती
1: नहीं, वो व्यवहार की बात है, गांव की बात नहीं।
0: हाँ।
1: व्यवहार।
0: तो ठाकुर ने सोचा कि यार अब उनके यहाँ बैठने से जाना है।
1: हाँ, हाँ।
0: ये तो व्यवहार वाली बात।
1: हाँ भाई, उनका लड़का
0: बैठने जाना है तो क्या करना चाहिए, अपनी तो लड़ाई यहाँ पर नहीं जाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो उनने अपने लड़के को बुलवाया।
1: हाँ।
0: और कहने लगे सुनो भाई।
1: हाँ।
0: वो फलाने गांव में वो हो गया है, मर गया है।
1: हाँ।
0: जिससे अपनी दुश्मनी रही।
1: हाँ।
0: लेकिन अब व्यवहार की दृष्टि से खत्म करो, हम तो जा नहीं पाएंगे, तुम चले जाओ।
1: हाँ, मतलब ये भी एक बात है ना।
0: हाँ।
1: कि भाई अब बेटा भी बराबरी का।
0: हाँ।
1: हो गया है।
0: हाँ।
1: आगे चल के इन्हीं लोग को व्यवहार देखना करना है।
0: तो वो लड़का कहने लगा।
1: हाँ।
0: वहां अच्छा ये बताओ हम क्या बोलेंगे वहां पर जाके बेकार में।
1: हाँ।
0: अरे वो आपके बराबरी के हैं, सब लोग जुटे तुम जाओ।
1: हाँ।
0: तो ठाकुर नारा समझते नहीं हो, तुम्हें कोई भाषण नहीं देना है वहां पर, जो चार लोग बोल रहे वही तुम बोलो।
1: ये भी ठीक है।
0: अरे भाई बैठने जाना माने कोई कथा थोड़ी पढ़ना।
1: हाँ ठीक है ना।
0: अब वो लड़का गया।
1: अच्छा एक बात और है, जब तक लड़कों बच्चों को ऐसे आप बाहर ना निकालो।
0: हाँ,
1: वे सीखेंगे क्या?
0: सीखेंगे कैसे?
1: हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ठाकुर साहब ने क्या किया?
0: हाँ, वो लड़का गया उनका।
1: अच्छा।
0: अब गया, अब वो जैसे उस गांव में पहुंचा उनके घर में जाने के पहले।
1: हाँ,
0: थोड़ा सा रुक गया।
1: अच्छा।
0: कहने लगे भाई क्या बोलेंगे भाई, सही बात है पहली बार गए। तो उसने में दो तीन लोग मिल करके लौट रहे थे।
1: हाँ।
0: वो लोग आपस में बात कर रहे थे, देखो समाज कैसा होता है, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ।
1: अरे जे तो है,
0: वहां कुछ बोले आए और यहाँ बाहर बैठ के कहने लगे वैसे अच्छा हुआ इनका लड़का मर गया, बहुत गुंडा बदमाश रहा।
1: अरे
0: गांव भर को परेशान करता रहा।
1: हाँ।
0: ये इस लड़के ने सुन लिया।
1: अच्छा।
0: वे आगल हुए, ये भीतर चला गया।
1: हाँ।
0: और उनसे कहने लगा अरे भाई बड़ा दुख हुआ सुन करके, मगर अच्छा हुआ तुम्हारा लड़का मर गया।
1: लियो
0: वह लड़का बदमाश था तुम्हारा, गांव घर में गुंडागर्दी करता था और गांव भर में परेशान किया था।
1: अच्छा, मतलब जो कुछ बाहर सुन लिया
0: वो बोल दिया,
1: वो ये बुलाया
0: और बाहर निकल आया।
1: हाँ।
0: और बाहर आके घर आया।
1: हाँ।
0: और पिताजी को बताया, पिताजी हम गए थे और ऐसा ऐसा बोल के आ गए। तो पिताजी माथा ठोक लिया, कहने का बताओ ऐसे में बुराई बढ़ेगी कि घटेगी?
1: हाँ वो ये, हम भी वही सोच में पड़ गए।
0: अब वो कहने लगे अब हमें खुद जाना पड़ेगा।
1: मतलब देखो लड़का लकीर का फकीर कहलाया।
0: हाँ।
1: भाई बाप ने बोला था जो कुछ चार लोग कहे
0: वही तुम
1: कोई तुम बोलना, सुबह बोला
0: बोले आए।
1: अच्छा
0: अब ये ठाकुर कहने लगे अब हमें जाना पड़ेगा कि नहीं?
1: हाँ, हाँ।
0: खाल चुक में समझते नहीं हो कोई, ठाकुर साहब गए।
1: अच्छा
0: जी भाई हमें बहुत हंसी आ जाता है। सही
1: क्या बात है भाई, तुम हंस रहे हो। अब मान लो हम हंसना चाहे तो कहते हो हंसना मना है।
0: नहीं बता तो रहे हम।
1: हाँ तो बोलो ना फिर बताओ।
0: ठाकुर गए।
1: अच्छा।
0: और उस गांव में गए, उस घर में गए और हाथ जोड़ के कहने लगे भाई हमारा लड़का बेवकूफ है।
1: हाँ।
0: उसको अकल नहीं है।
1: बताओ
0: कि किस जगह कैसी बात करना, किस जगह कैसी बात करना।
1: हाँ।
0: आप बुरा मत मानना।
1: हाँ।
0: अब की बात तुम्हारा लड़का मरेगा तो हम खुद आएंगे कहीं।
1: तो देखो फिर वही बात हुई ना। अरे यार अब जो बात कहती है कि हंसी तो आएगी।
0: आएगी मार माने जो वो लड़का, कम से कम लड़का अच्छा रहो।
1: हाँ।
0: जो और हो के, अब जो तो बाप ही रहे हो।

0: आप ही रहे।
1: नहीं, एक जगह कोई बात करते हैं, एक जगह कई जगह बात करते हैं, ये ऐसा होता है, खूब होता है।
0: अरे एक जगह कई बात करते हैं, हम तो कहते हैं वो लड़के की क्या गलती है।
1: हाँ, लड़के की कोई गलती
0: है नहीं, जैसा उसको बताया था वैसा उसने कर दिया।
1: हाँ, और क्या है? नहीं, एक बात और होती है इसमें, लड़कों को आप देखो, पहले समझो, लड़कों की कोई गलती नहीं होती।
0: अच्छा,
1: लड़कों की गलती नहीं होती, अपन लोग उनको समझा नहीं पाते ठिकाने से।
0: जी लो, मतलब घुमा फिरा के तुम ये कहना चाह रहे हो कि अपने जैसे जो बुजुर्ग हैं उनकी गलती है।
1: हाँ, उनकी गलती है, उनको बचपन से समझाना चाहिए कैसी बात करना, क्या बात करना। एक तुम्हें घटना बताए हम, बड़ी प्यारी घटना है। ऐसा हुआ कि एक बार एक पंडित जी आए।
0: अच्छा,
1: पटेल साहब के यहाँ पर। पटेल साहब ने कहा कि पंडित जी अच्छे आ गए आप, आज कथा कर लेते हैं सत्यनारायण की।
0: हाँ।
1: कहने लगे हो करो, अच्छो हो, दिन अच्छा है कर। तो पटेल कहने लगे लेकिन हमें टाइम नहीं है, हमारा लड़का पूजा में बैठेगा।
0: हाँ, ये भी ठीक है।
1: अब पंडित जी ने कहा हो चलो ठीक है, तैयारी हो गई, पूजा शुरू हो गई। हाँ। तो अब पंडित जी ने कहा आ जाओ भैया, कहाँ गए? तो वो पटेल साहब का लड़का आया। अब वो पटेल साहब का लड़का कभी जो पूजा पाठ तो किए नहीं।
0: हाँ।
1: वो आए तो कहने लगे हाँ कहो पंडित, क्या करना पड़ेगा बताओ। कहीं कछु नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम बोलते जाएंगे, मैं से तुम्हें पूजा करना है। कहने हो कोई हरकत नहीं, बैठो बेटा बे। तो वो लड़का कहे बैठो बेटा बे। अब वो कहे आंख में पानी लगाओ, आंख में पानी लगाओ। हाँ। अब वो कहने लगे हाथ में पानी लो। वो लड़का कहे हाथ में पानी लो। पंडित कहे कहा कर रहे हो तुम? वो कहे कहा कर रहे हो तुम? वो कहे अरे जो हम बोले वो तुम काय को बोल रहे? वो कहे अरे जो हम बोले वो तुम काय को बोल रहे हो?
0: मतलब वो पंडित जो कह जाए तो जे जजमान कहा है।
1: अब पंडित ने बोला था। हाँ। कि जो हम कहेंगे वही तुम कहे जाओ।
0: हाँ। अब बताओ, एक तो तुम जे बता रहे हो।
1: हाँ।
0: और बल्कि हम तुम्हें बताएं, कुछ लड़के बहुत तेज भी होते हैं। हाँ,
1: तेज लड़के कैसे होते?
0: अरे अपने गांव की बात है।
1: हाँ।
0: अभी परसों हम ऐसे ही जरा वो स्कूल तरफ से निकल गए।
1: हाँ।
0: अब देख, ठंड के दिन थे असल।
1: हाँ।
0: तो वो मास्टर साहब बाहर धूप में।
1: हाँ, हाँ।
0: कक्षा लगी थी, वो पढ़ा रहे थे।
1: अच्छा।
0: अब कोई लड़का कोई बदमाशी कर दी होगी या कहो काम धाम ना किया हो, जो भी हो।
1: हाँ।
0: हम निकले वहां से।
1: हाँ।
0: सो कान पे एकदम आवाज गई।
1: हाँ।
0: माँ साहब डांट रहे थे उसको।
1: अच्छा।
0: लड़के को।
1: हाँ।
0: कहले खड़े हो।
1: हाँ।
0: खड़े हो, क्यों नहीं खड़ा हो रहे? खड़े हो जाओ।
1: हाँ।
0: अब वो लड़का खड़ा हो गया।
1: हाँ।
0: कान पकड़ो और कहो मैं गधा हूँ।
1: हाँ।
0: वो लड़का इतना तेज, वो माँ साहब से क्या बोलता है, माँ साहब हम कान पकड़ने को तो तैयार हैं।
1: हाँ।
0: पर हम आपको गधा नहीं कह सकते। है नहीं? मतलब एक लड़का की तुम बता रहे कि पंडित ने बोली हम जैसा बोलो वैसा बोलो। अब दूसरा लड़का देखो तो उसने अपना दिमाग चलाया कहा।
1: ऐसे ही एक लड़का और रहा बदवाद। क्या हो? मास्टर ने उससे कहा खाए तुम लोगों को हमने घर से काम करके करके लाने को कहा रहा, सवाल दिए रहे, वो लिखने को कहा रहा।
0: हाँ।
1: कौन कौन ने लिखा है?
0: हाँ।
1: तो चार पांच लड़कों ने हाथ ऊंचे कर दी।
0: अच्छा।
1: कहे हमने लिखा है।
0: हाँ।
1: एक लड़का रहा, उसने नहीं लिखा रहा। मास्टर कहने क्यों, तुमने क्यों नहीं लिखा? कहने नहीं लिखा माँ साहब, लिख नहीं पाए, दरअसल में घर में काम रहा तो हम नहीं लिख पाए।
0: हाँ।
1: जे कोई कहने की बात है, पढ़ाई करने आते हो काय को आते हो, बताओ वो काम नहीं कर सकी, चलो उधर दीवार के पास खड़े हो जाओ और मुर्गा बन जाओ।
0: हाँ।
1: दीवार के पास खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ। तो लड़का एकदम फड़ाक से बोलने लगो, हे माँ साहब, हमारे बाप ने हमको स्कूल में भेजा है पढ़ाई के लाने।
0: हाँ।
1: कि भाई जी कछु पढ़ लिख के आदमी बन जाए।
0: अच्छा।
1: और तुम हमें जानवर बना रहे कि मुर्गा बन जाओ।
0: अरे भैया, जे लड़कों की स्कूल की बात या चल पड़ी है, हम बताएं।
1: हाँ।
0: एक ऐसा बदमाश।
1: हाँ।
0: कि वो लड़का रोज ही शायद अपने स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंचता होगा।
1: अच्छा।
0: देरी से आना।
1: हाँ, देरी से आना। हाँ, समझ।
0: देखो बात का हो रही है, अपन चाहे कि नहीं यार लड़के ने जो गलत किया है।
1: हाँ।
0: और भले ही वो बोल रहा है पर हंसना नहीं है।
1: हाँ।
0: पर वो बात समझ में आ जाती तो हंसी आ जाती।
1: बिल्कुल आ जाती अपने आप।
0: क्या हुआ, एक लड़का बड़ा बदमाश था, रोज ही देरी से जाता रहा।
1: आजा।
0: स्कूल में देरी से पहुंचता था। अब माँ साहब भी नाराज हो गए। और सही बात है भाई, एक दिन हो गए चलो भाई कोई काम रहा होगा, दूसरा दिन हो गया चलो भाई आज कुछ नहीं बोले। अब जो तीन चार दिन लगातार देरी से ही आए।
1: हाँ।
0: तो माँ साहब ने डांट के उस लड़के से पूछा।
1: हाँ।
0: यानी जो बात बता रहे हैं, देखो लड़कों का दिमाग

0: कहाँ चल रहा।
1: हाँ हाँ,
0: अब तुमने देखा होगा सड़क के किनारे,
1: हाँ,
0: आने जाने वाले वाहन जितने हैं उनकी जानकारी के लिए कुछ अलग अलग बोर्ड लगे रहते हैं।
1: हाँ, लगे हैं,
0: है ना।
1: हाँ, हाँ।
0: ऐसे ही एक बोर्ड था,
1: हाँ,
0: तो वो उसने पढ़ लिया।
1: अच्छा,
0: माँ साहब जैसे डांट के कहने, और आज तुम कक्षा में नहीं बैठोगे, बाहर निकल जाओ।
1: हाँ।
0: तो कहने, सर हमारी क्या गलती हो गई। बोल, क्या गलती हो गई, रोज देरी से आते हो तुम, कितने बजे अपना स्कूल लगता है। तो लड़के ने कहा कि वही 11:30 बजे, तो तुम 12 बजे आते हो रोज, 3-4 दिन से देखता हूँ, बाहर निकल जाओ।
1: अच्छा।
0: लड़का बोला, माँ साहब हमारी कोई गलती नहीं है।
1: अच्छा,
0: हमारी कोई गलती नहीं है।
1: अच्छा, देरी से आए हो।
0: हाँ, हमारे घर से आओ और स्कूल तरफ जब आते हैं वहाँ जो बोर्ड लगा है सड़क के किनारे,
1: हाँ,
0: वो हटवा दो, हम समय पे आएंगे।
1: अच्छा, मतलब बोर्ड की गलती है।
0: हाँ।
1: अच्छा, क्या मतलब।
0: तो माँ साहब ने पूछा, तुम्हारे घर के पास कहाँ है। बोले चलो। वो लड़का माँ साहब को लेके आया सड़क तक।
1: हाँ।
0: और स्कूल जहाँ से चालू होती है पास में वहाँ सड़क के किनारे, तो उसने कहा हम घर से निकलते तो राइट टाइम है।
1: हाँ।
0: जैसे ही हम पास में आते हैं तो वहां लिखा है धीरे चलिए आगे स्कूल है। मतलब लड़के अपने समय देखो कैसा दिमाग चला लेते हैं, है ना।
1: ये बोर्ड बताया तुमने, ये बोर्ड बहुत मजेदार रहते।
0: अच्छा,
1: अभी तुम मोटर में से कभी गए हो अगर,
0: हाँ,
1: तो सड़क के किनारे देखो कैसे बोर्ड लगे
0: रहते हैं ना, कहीं तीर बना है।
1: हाँ,
0: कहीं
1: वे नहीं।
0: हाँ,
1: वो जो नारे लिखे रहते हैं जिनमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: गांव की तरक्की में सबकी तरक्की।
0: हाँ, हाँ, वो क्या है, स्वदेशी माल खरीदिए।
1: हाँ,
0: स्वदेशी रहिए, ऐसा
1: हो,
0: कुछ।
1: हाँ, हो, हाँ। जीवन अमूल्य है।
0: हाँ,
1: संतुलित वेग।
0: हाँ,
1: ऐसे लगे कि
0: हाँ लिखे हैं ना।
1: अब ये अलग अलग रखे।
0: अच्छा, पर एक चीज है,
1: दूर दूर है,
0: यात्रा भी करते चलो तुम्हारी नजर भर पड़ जाए।
1: हाँ, तो भाई
0: अच्छा भी लगता,
1: अच्छा भी लगता। मगर एक हमारे जैसे रहे तेज,
0: हाँ,
1: उनने दिमाग लगाया।
0: अच्छा,
1: उनने सरकार को कहा कि एक काम करो साहब, ये बहुत दूर दूर लगे।
0: हाँ,
1: एक बोर्ड यहाँ लगा, दूसरा वहां लगा, तीसरा वहां लगा।
0: अच्छा,
1: इससे अच्छा इनको नजदीक लगा दो तो पढ़ने में अच्छा लगेगा,
0: सभी बोर्ड नजदीक।
1: हाँ, एक बात।
0: अच्छा,
1: दिमाग तो है
0: कैसा, नहीं तो उसमें क्या होगा फिर।
1: अरे देखो, अब समझ लो कि बोर्ड बिल्कुल नजदीक लगे।
0: हाँ,
1: एक के बाद एक, एक के बाद।
0: हाँ,
1: अब तुम्हारी मोटर चली जा रही, तुम मोटर में खिड़की के पास बैठे।
0: हाँ,
1: और बड़ी जोर से और चले जा रही मोटर, और वो बोर्ड लगना चालू हो गए।
0: हाँ,
1: और तुमने वो बोर्ड पढ़ना चालू कर दिया एक के बाद एक।
0: अच्छा,
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
0: हाँ,
1: संतुलित वेग, संतुलित जीवन, जीवन अमूल्य है, सुरक्षा में जीवन की अमूल्यता है, गांव की तरक्की में सबकी तरक्की है, आइए हम गांव की तरक्की करें, सावधान आगे गड्ढा है।
2: श्रोताओं, कुलकर्णी बंधुओं की नोकझोंक जारी रहेगी, मगर राजेश मिश्रा के बाद।
3: अभी शादी का माहौल है, जहां देखो वहां लड़का और लड़की देखने की स्थितियां चल रही हैं। शादी ब्याह के माहौल में चारों तरफ खुशियां हैं, कहीं पर विदा हो रही है, कहीं बारात लग रही है, ये सब स्थितियां अलग अलग माहौल में आपको देखने और सुनने को मिलती हैं, वो हम लोग भी अपने नजर से देखते हैं। शादी के लिए सबसे पहले लड़का और लड़की देखने की बात आती है, तो जब लड़का और लड़की देखने की बात आती है तो अब नौजवान लोग कैसे बात कर रहे हैं और लड़कियां कैसे बात कर रही हैं। लड़के लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात है भैया, गजब हो गया यार, बिल्कुल स्टेपनी वगैरह खुल गई यार। हाँ यार, लड़की देखने गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब लड़की के घर गए, कहूं लड़कियां के कक्का आए, कहूं मम्मा आए, कहूं फूफा आए, कहूं जिज्जी आए, कहूं जीजा आए, और असली चीज आए ना यार। फिर एकदम से हरीरे से पान दिखे, पर दखे को, हमने कही आ गई यार। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब लड़कियां को हमारे पिताजी लगे देखवे, लगे देखवे, तो हमने कहा तुम ही देख लो बाप। लड़कियों की तरफ जाइए कॉलेज में तो बात करेंगे,
4: हाय राम कितना मैचिंग ना, गागल से सैंडल तक क्या बात है रे। हाँ रे, मेरे को एक लड़का देखने आया था ना, इतना स्मार्ट था ना, मैंने तो अपने माँ बाप से कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने हमेशा माँ त्रिपुर सुंदरी माँ से यही बोला ना कि मेरे माँ बाप को अच्छा सा दामाद दे दो, अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा।

0: दूसरी लड़की बोली,
1: हाँ मेरे को देख ले आया एकदम आदमी जैसा था, मैंने तो देख के ही मना कर दिया ना।
0: तीसरी लड़की बोली,
1: हाँ मेरे को देखने आया ना तो मेरे को वो जो देखने आया ना उसके पिता बोला कि मेरा लड़का इतना अच्छा है, कभी किसी को बुरी नजर से नहीं देखता, हर किसी को एक नजर से देखता, तो वाकई देखा था तो बेचारा एक आंख से देख रहा था।
0: शादी के माहौल में अब आप आइए, शादियां आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, अब हम लोग उसके अंदर हास्य आपके बिल्कुल नजदीक होता है, आकाशवाणी का एक कार्यक्रम हंसना मनाए, किंतु जब आप हम लोगों की ये बात सुनते हैं तो आप उस हास्य को पहचान जाते हैं कि वाकई ऐसा होता है। शादी के माहौल में बड़ी खुशी का माहौल होता है और कैसे कैसे हास्य बातें हम लोगों को मिलती हैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं कि शादी का ये माहौल है और हल्दी तेल को लेकर कैसी परेशानियां नौजवान भाई कर देते हैं। एक आध महिला तुरंत कहेंगी,
1: काय जीजी ऐसे तो आओ कितनी बार हल्दी तेल होगा, ऐसे बताओ निकासी को टाइम, अब 6 बार होगा, 1 बार और लगवाओ निकासी करवाओ, मैं का बार बार ऐसे आओ बेटा तेल लगवाओ जल्दी, निकासी करवाने जल्दी आओ, बैंड वाले आ गए हैं तो जल्दी आ जाओ, बिल्कुल समझ गए।
0: अब दूल्हा मियां तो,
2: अरे यार सुबह से हमको जो कितनी बार तेल हल्दी थे हमको जो बिल्कुल पसंद नहीं है, घर के बुजुर्ग तुरंत तुम तो ऐसा नाटक कर रहे हो, मतलब तुम बिल्कुल शादी का है, तुम तो बड़े एहसान टाइप कर रहे हो,
0: तुम चुपचाप बैठो टोकर नहीं हमारे भाई भाग जाए, समझ गए। लड़के की माँ कितनी भी उम्र का बच्चा हो जाए उसका झुकाव बच्चे की तरफ होगा, वो पति से तुरंत कह,
1: अब हल्ला ना करो तुम फकर फकर लग गए। बड़ी मुश्किल से वो शादी को तैयार भाव है, अब तुम ये तो जो चीजों में ध्यान देने वो में तुम ध्यान देत नहीं है, अब 2 किलो आलू ले आए, अब समझ में नहीं आए कि आलू की सब्जी बनाए कि पानी की सब्जी।
3: अरे वाह यार बहुत बढ़िया।
1: अब फिर हम कछु कहते हैं तो तुम्हारा प्लेट पे असर बढ़ जाए। चुपचाप बैठे रहो, शादी ब्याह हो जान दो, बहू आ जाए,
4: तुम तो मेरे को हमेशा हमारे प्रोडक्ट दे लेते
1: हो, ऐसा तुम और नाटक हमें तो समझ में नहीं आया भाई तुम।
0: जैसे तैसे शादी का कार्यक्रम फिर आगे बढ़ेगा, अब उनका
1: काय जीत जी ऐसे तो हाँ तुम तो ऐसी बैठ गई है, एक भी अब जिन नई बहुओं से तो बिल्कुल बनना ना बनता ही नहीं है, इनसे वो ना फिल्म को गाना कह दो तो भाई गाते हैं, किंतु जो बनना तो इनसे गाते नहीं बने, तो तुम्हारी अब भौजी तुम ही ऐसी बैठ गई थे, हाँ तुम अब हम क्या करें, हमें तो खुद ही ऐसा दिमाग गाना गाना। अब ठीक है गन हो रहा हो बाकी वो तो गा दो, हल्दी से पीली ततैया मोरी भौजी। कोई गा दिया सो बनना
0: बड़ी मुश्किल से चालू होगा।
1: शहर में शोर भारी है न जाने किस की शादी है, बनना अब गवाओ भाई अकेले कब तक आई है।
0: वो भी बंद हो जाए ना, बारात की निकासी का टाइम आएगा, हर घर में आपने देखा होगा प्राय प्राय आधे घरों में ये होता है कि टाई बांधते लोगों से नहीं बनता, ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। अब चलो भाई बारात का टाइम हो गया, बैंड भी आ गया, 7 से 9 का बैंड और 8:30 यही बज गए, निकल क्यों नहीं रहा लड़का, अरे यार वो टाई बांधते नहीं बन रहा, अरे टाई बांधते नहीं बन रहा, अब जिसको बोलो उसी का भैया आप टाई बांध लेते, नहीं यार आप तो पहनते हो, अरे कहा पहनते यार 10 साल पहले शादी में जो बंधवाई थी भाई गिरमा टाइप निकाल दिए थे और फिर से अपने निकाल के और फिर पहन लेते। एक आध जन आएगा भी तो बड़ी थोड़ा ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा, नहीं यार जो बहुत बड़ो सिंगाड़ो बन रहा हो फोटो वालो यार तुम खुद ही बनाओ ना। जैसे तैसे एक आध जन आ भी जाएगा, टाइम निकल गई, अब बारात निकलती है तो लोग

0: बैंड बाजे में खूब नाच गाना होता। लोग पूछते हैं हमसे कि राजेश मिश्रा बारात के आगे जब दूल्हा घोड़ी में चलता है तो उसके आगे इतना नाच और गाना और बैंड क्यों बजता है? हमने कहा इसलिए होता है कि उसको ये कहीं समझ में ना जाए कि उसको फंसाने जाया जा रहा है। बारात पहुंच जाती, बारात पहुंचने के बाद स्वागत होती है, वरमाला होगी। वरमाला में आपने देखा होगा कि बच्चा ए भैया झुकना नहीं खींचे रहना। अब मान लो हाइट लड़के की अच्छी है, लड़की की छोटी है, तो अब बिल्कुल बेबी ऐसे खींचे खड़े हैं बिल्कुल, अब झुका ही नहीं रहे, जैसे तैसे उचका के माला पहना दी। अब माला पहन गई, विदा के टाइम में किस प्रकार का विदा का माहौल होता है कि लड़की के पिताजी आएंगे कि रोना नहीं, खुद ही रोने लगे,
1: बाबू जी
0: लड़की के काका पहलवान, ऊपर से पुलिस में हवलदार। लड़की पहुंची, काका का, नहीं नहीं बेटा बिल्कुल रंज नहीं करना, लड़का थोड़ी भी कड़वड़ करे हमें खबर करना, हम पटक के बंद कर दें। लड़के के घर में कुत्ता तो था नहीं, लड़की के घर में जो कुत्ता पला हुआ था उसको बड़ी चिंता थी कि हमारे जाने के बाद टाइगर को रोटी कौन देगा। माँ आ गई,
2: बेटा बिल्कुल ना रो बेटा, माँ माँ ना रो बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं ला करो बेटा, माँ हमारे जाने के बाद टाइगर को रोटी कौन देगा। माँ बेटा तुम उस टाइगर की चिंता मत करो, तुम तो इस टाइगर की चिंता।
0: दूल्हा मियां टाइगर बन गए।
2: ना रो बेटा बिल्कुल ऐसे रंज ना करो माँ।
0: अब दादी माँ के पास पहुंची,
2: दादी माँ ना रो बेटा बिल्कुल एक न एक ना तो सबको जाने बेटा।
0: वो अर्थ ही उल्टा हो गया कि एक न एक दिन सबको जाना। जब विदा होकर दुल्हन घर पहुंचती, पहुंचने के बाद वहां पर जिस कमरे में नई नई दुल्हन होती है, आपने गौर किया होगा कि दूल्हा मियां उस कमरे में जबरन घुसेंगे, कोई काम हो ना हो जबरन जाएंगे। और जब जबरन जाएंगे तो ये मान के चलो आप कि ज्यों ही पहुंचे और किसी ना किसी बहन ने बोला,
3: क्यों भैया बार बार क्यों आ रहे हैं कमरे?
0: फालतू बात नहीं करना, हमारा पेंट नहीं मिल रहा था। उनको चिंता लगी रहती है कि हमारी दुल्हन नई नई दुल्हन ने खाना खाया कि नहीं खाया, रोत रही है कि नहीं रो रही है। अच्छा अब तो घूंघट की प्रथाएं जो हैं कम होती जा रही, पहले तो इतना घूंघट होता था, इतना घूंघट होता था कि बेदा के टाइम पे एक बार ये हुआ कि लड़की जो थी दुल्हन जो है वो दूल्हे मियां से लिपट गई। वो कहने लगी,
2: भैया कब आओगे ले ले।
0: जब भी किसी घर में दुल्हन को पर्दा की बात आए तो हमारे नौजवानों को सुना देना चाहिए कि नहीं बाबूजी ये नहीं करो, एक बार ऐसा धोखा हो गया था, राजेश मिश्रा ने सुनाया था, वो दूल्हा को भैया समझ बैठी, तो इसलिए बिल्कुल प्रथा को धीरे धीरे कम करा दो। अब यहाँ पर दुकान से रात में 9 बजे आना है तो दोपहर में ही आदमी चला आता है। नई नई शादी का माहौल अलग होता है, ये 4-6 महीने का माहौल होता है। अब दुकान से चले आए, अपने छोटे छोटे बच्चे CBI का काम करते हैं,
4: चाचा चाची ना खाना बना ली है।
0: अब यहाँ से पत्नियां बिगड़ना शुरू करती, पति ने इशारा किया, आधी बात तो समझ में आती नहीं कि बोल क्या रहे। इधर आओ,
4: क्यों है
0: इधर आओ,
4: क्यों
0: इधर आओ,
4: खाना बना रहे ना,
0: खाना वो बुढ़िया बनाएगी तुम्हें, इधर आओ।
4: कितने खराब हो ना बाबूजी सुन रहे।
0: बाबूजी की चिंता मत करो ना, उनको दिखाई देता ना सुनाई देता। और इसीलिए हमने उनका ऑपरेशन 6 महीने लेट कर दिया। पहली बार तो सब्जी बनाई, पत्नी ने

0: और उसमें इतनी मिर्च डाल दी कि पति की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। और पत्नी पूछ रही, क्यों सब्जी कैसी लगी ना?
1: बहुत अच्छी।
0: फिर आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं?
1: तुमने पहली बार बनाई ना, इसलिए आनंद के आंसू।
0: पत्नी बोली, फिर थोड़ी सी सब्जी और ले लो।
1: पति तुरंत बोले, इससे ज्यादा आनंद सहन नहीं है।
2: और बस खत्म हुआ आज के धारावाहिक का ये अंक। अगली बार फिर मिलेंगे।

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना।
1: श्रोताओं, अभी आपने धारावाहिक हंसना मना है का भाग 12 सुना। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, लीजिए एक सूचना। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्मों के नाम हैं हम हिंदुस्तानी, जिसका गीत है हम हिंदुस्तानी, जिसे गाया है मुकेश ने। दूसरा गीत है कर्मा फिल्म का ऐ वतन तेरे लिए, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। तीसरा गीत है वीर ज़ारा फिल्म से ऐसा देश है मेरा, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान। चौथी फिल्म है बॉर्डर के घर कब आओगे, सोनू निगम और रूप कुमार राठौर के आवाज़ में। पाँचवा गीत है ये हंसी वादियाँ फिल्म रोजा से, गाया है SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9425149342, यानी 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन सुना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का पहला गीत बरसात की रात फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनने हमें खत लिख भेजा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकर शबाना रिजवान इमरान आलम शबाना चांदनी सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही फिरोज आलम और अर्श बाबू ने। बीड़ शहर से प्रकाश पकारिया पराग प्रतीप और केशव पटेल ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल विशाल शीला और गायत्री ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद रानी महिमा और नीतू वैद ने। जामरून से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है दुर्गादास जोशी गंगाधर गजानन संजय आशिक पृथ्वीराज कुमारी साध्वी और परवणी हुन ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: श्रोताओं लीजिए सुनिए एक सूचना। आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 से रात्रि 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 4 बजे तक। फिल्में हैं हम हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं हम हिंदुस्तानी जिसे गाया है मुकेश ने, दूसरा गीत है ए वतन तेरे लिए, फिल्म का नाम है कर्मा, गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़, तीसरा गीत वीरजारा फिल्म से जिसके बोल हैं ऐसा देश है मेरा जिसे गाया है लता मंगेशकर उदित नारायण और गुरदास मान ने, चौथे गीत के बोल हैं कि घर कब आओगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, गायक सोनू निगम और रूप कुमार राठौर, पांचवीं फिल्म है रोजा जिसके गीत के बोल हैं ये हंसी वादियां और गाया है एसपी बाला सुब्रम और चित्रा ने। हमारे मोबाइल नंबर है 9425149342 यानी 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी जबलपुर से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ताजमहल से शायर साहिर लुधियानवी संगीतकार रोशन, जिसे सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर कुमार दीपक और ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा ने। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, साइमा, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद ने। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश, साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल।

का अगला गीत हंसते जख्म फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनने हमें पत्र लिख भेजा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये ने। बाजारपारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र सेन ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां ने।

0: ये लगता है कि यहाँ
1: कार्यक्रम का ये गीत दूसरा आदमी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में मजरू के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला राजेश रोशन ने, जिसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगरदीवे रमा सीता रीमाताई दीक्षाताई और राहुल ने। सिंहपुर वड़ा से राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा पारस तपस्या और करिश्मा ने। बेरडी से राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी चंचल अर्जुन और धीरज ने। पुणे से पंकज वाड़ोदे आर्या प्रियंका बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने हमें पाती लिख भेजी है जरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी, रजनी और कार्तिक ने, कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित और हैप्पी ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल ने, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय ने, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सदमती ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब होंगे हिंदी में समाचार जिसे हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है।

0: पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. But continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation